0: देखो देखो B21 दे मुंडे खड़े इन्हां नूं पुछो इन्हां दा काम की है इत्थे तुहाडा शहर केड़ा मुंडे हो
1: साडा शहर जलंधर
0: ते तुसी चंडीगढ़ की करदे हो
1: जी।

ता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आख्या ऐ एक धरती दी उपज खान वालेओ, एक चंद ते सूरज दी रोशनी मानन वालेओ, एक आबो हवा जल छक के जीवन वालेओ, क्यों लड़दे हो, क्यों आपसी मत भेद समझदे हो, क्यों ऊंच नीच दे भेद बना के अपने विच दीवारां खड़ियां करी बैठे हो। साच कहूं सुन ले हो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ए शुभ उपदेश दिता ते फिर खालसा पंथ दी साजना कीती और ओ खालसा संत सिपाही बनाया, जिन्हां दा जीवन है पै काहूं को देत ने पै मान त्यान। अकाल पुरख वाहिगुरु दी पूजा परचा शब्द दा ते दर्शन खालसे दा किया भाई, जो खालसे दा दर्शन करेगा उना खालसियां विचों मेरा दीदार होवेगा। इसलिए संसार तो बाजी ओई जित के जाएगा भाई, जिन्हां ने जपया है।

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है हैबी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: हफ्सैन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio. Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2pm with the event from 3pm until 8pm. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media.
5: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news, तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. आई सी यू ऑन द अदर साइड. वंस अगेन वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस शो एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. दिस इज एबी दिस साइड और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूंगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

Welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मैं आशा करता हूँ कि इस गाने को आपने काफी पसंद किया होगा. मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं. I hope you know that. हमारा ऐप है ना, सो गूगल प्ले नहीं तो ऐप स्टोर पर आप जा सकते हैं एंड हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. तो ज़रूर जाइएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा और दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर हैं तो हमें सुन सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा. एट द सेम टाइम हमारी वेबसाइट है ना, www.sunriseradio.fm. लॉग ऑन कीजिएगा, सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स जो हैं, सब कुछ, सब इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं. एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं हमारे रेडियो के द्वारा. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: notice the way fans shout at football matches?
1: Oh, wake up!
0: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official Media Partner, Sunrise Radio.
5: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
6: तेरी गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
7: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
6: चाचा केड़ा चाचा?
7: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
6: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
7: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274-488-935।
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after yet another beautiful classic flashback on your Sunrise Radio 103.2 FM. Right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. So I'll see you on the other side.

Welcome back after yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi This Side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा। सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।

इस शाम के दामन में क्या है। मध्यम मध्यम सी रोशनियों में धुन पे मचलते जिस्मों पर हल्की सी दमक, लहराती हुई संदल बाहें, बलखाती हुई रेशम जुल्फें, ये अंग अंग ये झलक झलक शीशों की खनक, शीशों को छूते नाजुक लब जिनमें शाम की सुर्खी है, हिरनी सी वहशी आंखों में अनजाने से पैगाम बसे, कोई देख के इनको बहके तो इल्जाम किसे, इन लम्हों के प्यालों में जितनी मस्ती है सारी की सारी तुम पी लो, इस शाम को जी भर के जी लो, कल जो भी होगा

वाह, व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

बैक ऑफ द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770-6923-788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

0: संजना।
1: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: ऋषि'स विजन प्रेजेंट्स Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

शिजरा मौजूद है आप गैरों के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ बैठे हैं हमारी इधर अपनों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, आई नो वेलकम, खुश आमदीद। कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना, आपका सिर्फ आपका अपना काशिफ। सनराइज रेडियो पे आप हमें सुनते हैं जनाब, डीएबी के जरिए 100.6 एफएम और 103.2 एफएम क्रॉस्ट वेस्ट यॉर्कशायर, और दुनिया भर में आप हमें सुनते हैं बिल्कुल जनाब साफ और शफाफ आवाज में दुनिया भर में sunriseradio.fm के जरिए, द गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर के जरिए अगर आपने हमारा साथ निभाना शुरू किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, हवा पे बिखरती हुई मेरी आवाज आपके दिलों के दरवाजों को बिल्कुल जनाब खटखटाते खटखटाते तोड़ के रख देगी, जब तक आपके दिल का दरवाजा खुल ना जाए और हमें आपके दिल में थोड़ी सी छोटी सी चुन्नी सी मुन्नी सी टीनी मीनी सी जगह ना मिल जाए। हम हार नहीं मानने वाले,

और जनाब नंबर बता दें क्योंकि कुछ कॉलर्स हमारे साथ शामिल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर आप को हमारा नंबर भूल गया है जैसे हम आपको भूल जाते हैं, हम आपको नहीं भूलते, यानी आप मुझे भूल जाते हैं। वैसे बादाम इतने महंगे भी नहीं है, पता नहीं क्यों खाया करें ना बादाम, अपने डॉक्टर से पूछ के ना रात को पानी में भिगो के 5-7 बादाम खाया करें ताकि आप अपने काशिफ को भूले नहीं। मैं तो खर्चा करता हूँ आपकी वजह से, और कभी उसको वो जो है ना खर्चा जो बादामों का मैं करता हूँ आपकी वजह से ताकि मेरा दिमाग तेज तेज चलता रहे, बातें बनानी मुझे इतनी आती नहीं, सिर्फ बादाम खाता हूँ तो गुजारा होता है। आपको दिल, जी हाँ, दिल में बहला, आपका दिल बहलाने के लिए यहाँ पे जितनी भी बातें हम करते हैं आपको बताए वो सिर्फ होती हैं आपके लिए। लेकिन आप जो बातें करना चाहते हैं हमसे, जो इंतजार में है 01274306666 के जरिए शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जनाब शर्त मैंने हमेशा एक रखी है आपके लिए। शर्त पता क्या होती है? जी जनाब, जिन्होंने हमारा ध्यान भटका दिया, हमारी जुबान अटक गई, कॉल करते हैं, काटते हैं, फिर वापस कॉल करते हैं और स्क्रीन की तरफ ध्यान जाता है तो हम भूल जाते हैं कहना क्या था आपको। ना करें ना छेड़छाड़ करें, अभी तो आए हैं। अच्छा जनाब, ये छेड़छाड़ चलती रहेगी अगर आपको टाइम मिले तो, वक्त मिले तो, फुर्सत मिले तो, दिल चाहे तो। जी जनाब, कॉल कर सकते हैं आप, शामिल हो सकते हैं, आपकी अपनी महफिल है, आपके लिए अगर हम आए हैं तो आप का अगर दिल माने कि आप भी हमें बताएं कि आप भी मौजूद हैं हमारे लिए, हमारे साथ साथ हैं, साथ निभाने वालों में से हैं आप, हमें टरखाने वालों में से नहीं है। हाँ जी, तो फिर बताइएगा, फिर बताइएगा, अगर बाद में दम हो तो फिर आइएगा। और 01274306666 जनाब, 01274306666 आपका और हमारा रब्ता नंबर। जनाब आज जुबान शुरू में ही अटकना शुरू हो गई, देखा ना, नजर लगा दी ना बादामों की, वो बादाम खा के आए आपकी नजर। मैं नेक्स्ट टाइम जनाब कोई मिर्चे शिर्चे जला के ना वो अपने ऊपर से वो वार के लाहौला वाला कुत ला बिल्ला पढ़ के उसकी पूरी तस्बीह करके फिर यहाँ पे आऊंगा जनाब। आज तो शुरू में ही जबान अटकने लग पड़ी, सारा कसूर आप सबका है जो मेरे साथ इस वक्त कॉल्स में है, सब कसूर और सारी मस्ती आपकी है। चलें जनाब, अभी आपको बताते हैं कि हम इतने खुश क्यों होते हैं आपसे मिलके, कोई तो कमाल होगा आपका भी। कोई तो बात है आप में जो किसी ने नहीं बताई आपको, लेकिन किसी को तो बतानी पड़ेगी ना कि आप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, आप हैं क्या हमारे लिए। चलें आपको बताते हैं, सुनिएगा ये गीत, इसमें हम आपको बताते हैं कि आप हैं क्या।

0: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है दिन के ठीक है 2:20.
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
5: 1274-488-935

जी जनाब वेलकम बैक कहते हैं आपको ब्रेक के बाद और आपको बताएंगे हमारे साथ रहे पहले कॉलर आज के मॉर्निंग मो मॉर्निंग मो जनाब कहते हैं कि मेरा नाम मुश्ताक है, आपने मो गलत बोला है, मुझे सब निक नेम मेरा मो है लेकिन मेरा नाम मुश्ताक है। कहते हैं सिर्फ आप हैं जो मुझे मॉर्निंग मो कहते हैं, बाकी सब मुझे मुश कहते हैं या फिर मुश्ताक कहते हैं। आज आप घर में हैं, मिक्स वेजिटेबल्स बना रहे हैं और साथ में हमें सुन रहे हैं। आज आपने वादा किया, आपने कहा किसी चीज पे हम मौन नहीं करेंगे। आज आपका डे ऑफ है और आप मिक्स वेजिटेबल बनाएं जनाब, खाएं, मजे उड़ाएं। वैसे देखें जब आपसे आप मॉर्निंग किए बगैर बात करते हैं ना, तो मुझे आपको मॉर्निंग मो कहते हुए जरा अजीब लगता है। तो आज मैं आपको मॉर्निंग मो नहीं कहूंगा, आज मैं आपको मुश्ताक कहूंगा। कैसा हुआ, अच्छा लगा ना? तो मुश्ताक साहिब विदाउट मॉर्निंग आज आपने कॉल की और आपने फरमाइश की दो गीतों की। जनाब एक तो हमें मिला नहीं, उसी चक्कर में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना पड़ा, क्योंकि मॉर्निंग मो जो हुआ करते थे वो आप मुश्ताक हैं, ठीक है जी, याद रखें। तो जनाब वाइल मुश्ताक भाई इज कुकिंग इन द किचन, हमने उनका फेवरेट गीत लगाया। मुझे सारे गाने जो है ना वो डिलीट करने पड़े जो मैंने सिस्टम में ऐड कर रखे थे नेक्स्ट लगाने के लिए, और वेला होके आपसे बातें करना चाह रहा था ऑफ एयर या ऑन एयर, लेकिन अब मुश्ताक जी ने पहली बार फरमाइश की और एक गाना मिला नहीं लेकिन एक मिला, तो वो आपके लिए लगाते हैं। क्या याद करेंगे, आप कहते हैं कि जनाब ये गाना आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं और सुना भी करते थे। ये गाना मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये आया था नया नया उस वक्त हमारे डैडी को याद होगा कि क्या हालात थे इस गाने के, कितना ये वायरल हुआ था, हिट हुआ था। अच्छा वायरल उस वक्त भी गाने होते थे, मतलब 90s में 80s में होते थे वायरल? कैसे वायरल होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, है ना, सोचने की बात है। मुश्ताक भाई दोबारा कॉल करेंगे तो ये आपसे पूछूंगा कि जब ये मूवी आई थी नई नई क्यामत से क्यामत तक, और जब ये गाना हिट हुआ था तो वो कैसे हिट होता था, मतलब अभी तो हम देखते हैं, मतलब हम लोग जब ना पहले बोर होते थे, लोग बोर होते थे, या हम, मुझे भी याद है बचपन में हम बोर होते थे तो छत का चक्कर चल लगा लेते थे, कोई पतंग उड़ा लेते थे, बाहर सहन होता था, आपको भी याद होगा है ना, तो सहन का चक्कर लगा लेते थे, गली मोहल्ले में थोड़ा सा जाके दोस्तों यारों को तंग कर लिया, नेबर्स को तंग कर लिया, किसी के अमरूद चोरी कर लिए, किसी के जनाब अगर ग्रेप्स वो लगते थे ना अंगूर, वो उसकी वो बेल होती है, दरख्त नहीं होता अंगूरों का, तो वो बेलें जब दीवारों से बाहर आती हैं तो फिर उस पर जब गुच्छे लगे होते थे अंगूरों के वो तोड़ते थे, और कुछ नहीं तो जामुनों का मौसम होता था जामुन तोड़ते थे, आमों का मौसम होता था आम तोड़ते थे, कुछ ना कुछ पंगा होता था। खाना मतलब हमें घर में मिल जाता था, सब कुछ फ्रिज में हर किस्म का फ्रूट पड़ा होता था, लेकिन जब वो क्या कहते हैं पंगे और शरारतें करने के लिए, टाइम पास के लिए ये चीज़ें होती थी पहले। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होता है। तो पहले हम छत पे चक्कर लगा लिया, सहन पे चक्कर लगा लिया, मतलब दोस्तों यारों से गली में थोड़ी आवारागर्दी कर ली, और बाकी जो मैंने आपको अपने कारनामे बताए वो कर लेते थे, आप भी यही करते थे मुझे पता है। लेकिन आजकल जब हम बोर होते हैं, देखिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई कि वायरल कैसे होते थे गाने, पहले हिट कैसे होते थे। तो अभी हम लोग जब बोर होते हैं, या अब की जनरेशन जेंजी लोग जब वो बोर होते हैं तो वो फेसबुक का चक्कर लगा लेते हैं, हम सहन का चक्कर लगाते थे, गार्डन का चक्कर लगाते थे, वो बाड़ियां बनाई होती थी हमने, उसमें थोम लगाते थे, गार्लिक धनिया लगाते थे, अपनी अपनी वो हमने ना क्यारियां बनाई होती थी, सभी गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने, हमने ना अपनी अपनी क्यारी की निशानियाँ बनाई होती थी, तो हम देखते रहते थे और कहते थे कि उसके जिनो है वो ना धनिया उगाया, टमाटर उगाए हैं, मिर्चें, हरी मिर्चें जिनको आप नीली मिर्चें कहते हैं, उसकी क्यारियाँ होती थी, तो वो ये काम होते थे जब हम बोर होते थे। तो आजकल जब बोर होते हैं लोग तो फेसबुक का चक्कर लगाते हैं, ज़्यादा बोर होते हैं तो इंस्टा का चक्कर लगाते हैं, ज़्यादा बोर होते हैं तो टिकटॉक पे चले जाते हैं।
तो दुनिया काफी बदल गई है जनाब, और हम जो मिडल वाली जनरेशन है ना, जिन्होंने वो टाइम भी देखा है और ये टाइम भी देख रहे हैं, तो ना इधर के हैं ना उधर के लेकिन सवाल वही है कि पहले गाने कैसे हिट होते थे, मतलब ना इतने टीवी चैनल्स होते थे, ना सोशल मीडिया होता था, तो गाने वायरल कैसे होते थे, सवाल है ना इंटरेस्टिंग।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord You can trust.
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: जी जनाब, सामिया आपकी कॉल आई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहती हैं कि काशिव, आज मैं आपको बहुत ज्यादा तंग कर सा। ये आपने कहा, ऐसे ही कहा ना, तंग कर सा। तो मैंने कहा जी आप जितना तंग कर सा आपका दिल है आप करें। हम इतने खुले खाले हैं जनाब और खुले डुल्ले तबीयत के हैं कि आप जितना तंग करेंगे वो फिर भी कम है। आपने लास्ट शो में हमें बिल्कुल कॉल की थी, लेकिन आखिर में तकरीबन लास्ट आवर में कॉल की थी और साथ निभाना शुरू किया था। वैसे आप कभी हमारा शो मिस नहीं करती हैं। लास्ट शो में बात हुई थी, अगर आप सबको याद हो तो सामिया आई थी, उन्होंने कहा था कि वो उनके कोई मेहमान आ गए थे जिसकी वजह से वो कुछ हिस्सा शो का सुन नहीं पाए। लेकिन आज की आवाज में कॉन्फिडेंस और क्या दबंग। आपने क्या, काशिव आज मैं आपके साथ साथ हूं, आज मैं आपको बहुत तंग कर सा, जितना तंग कर सकती हैं करें जनाब आप।

बिल्कुल जनाब, तुम हो हम है तो फिर क्या गम है, कख भी नहीं। हम और आप मिलके जनाब महफिल सजाएंगे, सजी हुई है आपकी कॉल्स। अगर आप चाहें तो साथ निभाना चाहें अपने खूबसूरत से नाम के साथ जोड़ के, कोई भी खूबसूरत गीत आज आपके जहन में हो तो बताइएगा क्या गाना आपके जहन में अटका हुआ है। और जनाब हमें किसी ने कॉल की थी, उन्होंने नाम नहीं बताया। अच्छा, वो हमेशा कॉल करती है, उनकी आवाज अब मुझे, जी जनाब आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज अब मुझे, मैं पहचान लेता हूँ। आपने आज हंस के कहा काशिफ आज नाम नहीं पूछा, मैंने कहा मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं बता रहा था उनको, आपको भी बता रहा हूँ कि बिल्कुल जनाब मैं पागल हूँ दीवाना हूँ आपके लिए। तो आपकी आवाज क्यों नहीं पहचानूंगा, अपनों की आवाज वाला क्यों नहीं कोई पहचानेगा। फिर आप रेगुलर कॉल करती हैं और हमेशा का स्यापा आज हमने मुका दिया, गल ही मुक गई ते खिला गया ठोक। नहीं पूछेंगे आइंदा हम आपका नाम, वजह से आज नहीं पूछा। अच्छा आज आपको थोड़ी सी ना, वो क्या कहते हैं, आपकी आवाज में ऐसे ना थोड़ा सा अजीब सी कोई परेशानी महसूस हुई मुझे आखिर में, कि मैंने नाम क्यों नहीं पूछा आपको, ना आपको सोड़ पड़ गई। तो पता लग जाता है ना जनाब, अपनों का पता लग जाता है तबीयत का, आपके अंदाज, आपके नखरे, आपके नाज, तो वो उस तरीके से हम उठाते हैं जिस तरीके से हमें जान पहचान आपकी होती जाती है। तो इसलिए नाम नहीं पूछा आपको जनाब, ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए भी लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने हम पे छोड़ा सामिया। ये गीत आपका फेवरेट है मुझे पता है। और जनाब हम और आप जहां जहां इस वक्त कनेक्ट हुए हुए हैं हवा के, ये इस हवा पे बिखरती बिखरती ये आवाज जिसके जरिए आपकी समातों का और हमारे आवाज और अल्फाज का एक कनेक्शन बना हुआ है, जहां जहां कॉल करो ना करो, फिक्र ना करो, टेंशन ना करो, ये गीत और हर बात आपके लिए है। लेकिन आप कॉल करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, 2:46 हो चुके हैं।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दाला, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
6: Music. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback as we go down memory lane where we

जी जनाब, जल्दी से मुझे एक और गाना फिट करना था, बजाय इसके कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बातें करते आपके साथ। जनाब आपको बता दें, मैं हूं आपका अपना काशिफ, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो, और जनाब रऊफ हाशमी साहिब हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल जनाब, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, और कुछ और कॉलर्स भी हैं लेकिन उनका नाम थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे। मजीद कॉलर्स जो आएंगे उनके साथ बाकी दोस्तों के नाम। जनाब रऊफ हाशमी साहब कहते हैं कि वो बाहर उनको आना पड़ा, अंदर शोर ज्यादा था क्योंकि उनके दोस्त अहबाब गपशप लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा काशिफ जी सारे आपका शो सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और ऊंची आवाज में आपको ही सुन रहे हैं, लेकिन साथ में गपशप भी, दोस्तों की महफिल सजी हुई है पाकिस्तान में। जनाब आपने वहां से कॉल की स्पेशली अपनी महफिल से बाहर निकल के, क्या बात। और जनाब जितने भी रऊफ हाशमी साहब के साथ इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप भी जनाब जहां भी महफिल सजाए हुए हैं, सभी दोस्तों के नाम ये खूबसूरत सा गीत, आपकी बातें जनाब। कुछ लोगों की बातें होती हैं ना जनाब, वो दिल में उतर जाती हैं, मतलब चेहरा देख के दिल में कुछ लोग उतरते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि वो बात करते हैं लगता है मुंह से फूल झड़ते हैं। हाय सामिया ने दोबारा कॉल की, उन्होंने कहा काशिफ डोंट बी सरप्राइज इफ आई विल रिंग यू अगेन। मैंने कहा हमारा तो इतनी बार तरह निकला है कि अब तो हम शॉपिंग लिस्ट में सबसे टॉप पे लिखा हुआ है कि दो चार तरह ने लेने हैं, हमने सारे तरह निकल निकल के मौक गए हैं। मीन टाइम जनाब आपकी बातें आपकी बात कर रहा हूं, दिल में उतर रही हैं।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइजर रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है दिन के 3:06।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो अपने काशिफ के साथ साथ। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ। सनराइज रेडियो को आप सुन रहे हैं 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पे दुनिया भर में आप हमें सुन रहे हैं sunriseradio.fm के जरिए। और जनाब, आगे हम अपने यानी कि आपकी और मेरी इस महफिल में हम आ चुके हैं सेकंड आवर में। अगर आपने पहला आवर मिस कर दिया तो आपने मिस ही कर दिया जनाब। अब आप जो मर्जी कर लें, उकी कहंदे ने पिट्टो भावें अपनी जान नूं ते भावें मेरी जान नूं। बिल्कुल जनाब, ये पीटने की बात इसलिए की कि हीरा हमारे साथ आई और उन्होंने कहा कि जनाब आज वो ब्रेडफोर्ड टाउन में है, कुछ वहां पे मेला शेला है। और उन्होंने ये जुमला हमारे कान में डाला, बड़ा अच्छा लगा। कहती है काशिफ आप आएंगे ना मेले पे? मैंने कहा नहीं जी, हम नहीं आएंगे, हम बड़े बिजी हैं। जब उन्होंने ये सुना उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा मैं पिट्टा हूं अपनी जान की। तो मैं क्या सोची कि आई सां कि तुसा आसो ते तुसा की तकसा। मैंने कहा जनाब आप टिकटॉक खोलें अभी, मुझे वहां पे देख लें। कहते नहीं, असा एडे तैयार होके आए हाँ। ते मैं असा ना क्या मतलब आने नाल, असा ने और भी बंदे हैं ना। मैं तुसा मिकी तकड़ आए सो या तुसा मिकी चाने वास्ते आए सो? बिल्कुल इसी तरह कहा। तो फिर जाके वो हंसी और उनका मूड थोड़ा ठीक हुआ। फिर कदा सही हीरा जी, तुसा मिकी पहले दसो और ना, तो मैं इत ना अच्छा और मैं उधर आई जावा। बहुत ही मजा आया जनाब, जबरदस्त एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हमारी। और बड़े मजे की कॉल्स अब आ रही हैं। अब आपको मेरी आवाज से पता लग गया होगा, पहला आवर जरा पुरसकून रहा, थोड़ी बहुत शरारतें आपने की, लेकिन अभी जो हीरा जी ने आगाज किया, हीरा बहुत शुक्रिया आपका, मजा आया आपसे बात करके। यकीन करेंगे वो जो एनर्जी थी ना, एक होती है, एक वाइब होती है मेरी यहाँ पे बैठ के, वो बिल्कुल अब बिल्कुल जनाब अपने ट्रैक पे हम आ गए हैं। और आप जो इतनी तैयारी करके आई हैं, आप सूट शूट पहन के आई हैं, नहीं वो पैंट कोट टाई वाला सूट नहीं, मतलब जो भी आप अब ख्वातीन की तैयारी होती है, आप अपनी तैयारी मुकम्मल करके, आपकी बातों से, आपके जोश और जज्बे से लग रहा था कि आज आपने बिजलियां गिरानी थी, लेकिन बाल बाल बच गया मैं, बच गया। खैर आप इंजॉय करें, आप मजे करें, हमारे हिस्से के भी मजे करें। हम हैं ना यहाँ पे, हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां बड़ी हैं, क्या करूं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो इंतजार करते हैं, जिनका दिल बहलाना होता है। और जनाब जिनका दिल बहलाना होता है वो फिर वो नाराज होंगे ना जब हम यहाँ पे नहीं आएंगे। और वो भी होता है ना, बीमारी ना हो, किसी और वजह से हम ना आए तो फिर तो खैर है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, लेकिन एवं ही हूं। बिल्कुल आप हमारे हिस्से के वहां पे पहुंच गई हैं तो समझे सारी रौनक पूरी हो गई वहां पे। और यहां आना जरूरी था उस काम से जो काम आप कर रही हैं। कहते हैं ना, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। बहुत सो की उम्मीद हूं मैं, तो बहुत सारे दोस्तों की उम्मीद होता हूं मैं जब वो यहां पे मुझे ट्यून इन करते हैं सनराइज रेडियो 24 घंटों, तो संडे वाले दिन उनको पता होता है। तो बहुत सारे दोस्तों की हिम्मत हूं मैं, मुझे पता है, बहुत सारे दोस्तों की उम्मीद हूं मैं, बहुत सारे दोस्तों की मुस्कुराहट हूं मैं। तो जनाब जैसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है लड़ाई करने के बावजूद भी, इसी तरह मस्ती करने के बाद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जैसे मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आपने लाई, इसके लिए रब आपको अजर दे। लेकिन जनाब ये गाना आपके लिए, जो जो जहां जहां आज सूट शूट पहन के तैयारी करके घर से निकले हैं,
चाहे शादी ब्याह पे जाने के लिए किसी पार्टी में या इसी तरह टोन का चक्कर लगा रहे हैं आप, ये तो अच्छा हुआ हम बच गए, वरना हम अगर देख लेते तो हमारा तो दिल ही बड़ा नाजुक सा है, तो पता नहीं दिल और वो कलेजे पे बिजलियां गिरती। तो आप बिजलियां गिराएं जनाब, जम जम गिराएं। मीन टाइम हीरा आपके लिए, आपके साथ जितने भी और भी अगर वो सुन रहे हैं, और अगर आपने अकेले कान में ब्लूटूथ और टूटियां लगाई हैं या फिर स्पीकर पे लगाया हुआ, तो सारे टाउन हॉल के पास हमें सुन रहे हैं तो फिर तो मजे आ जाएंगे। लेकिन जनाब ये गीत खास तौर पर आपके लिए, ठीक हो गया। और उसके अलावा रऊफ हाशमी साहब आपने गोल की, तुसी कहंदे हो जी असी ऐ ही गाना सुनना सी, तुसी जिहड़ी गोली मैनू देंदे हो ना यकीन करो ऐ गोली मैनू ना दिया करो, जो भी गाना मैं लगाता हूँ ना रऊफ साहब कहते हैं जनाब असी ऐ ही गाना सुनना सी, तुसी ला दिता। अच्छा रऊफ हाशमी साहब कहते हैं जनाब काजू साहब तुहाडा गाना सुनिया, वो किहड़ा गाना सी मैं तो भुल ही गया, हाँ तेरा ध्यान इधर किधर है जरा पलट तेरा हीरो इधर है, हाँ ये वाला गाना। तो उसके फौरन बाद या उसके बीच में कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि जनाब काज साहब तुसी तमाला पवा दितियां, तमाला बहुत हंसा मैं उस टाइम पे, अभी हंसी को कंट्रोल किया है। रऊफ हाशमी साहब का अंदाज बड़ा क्यूट सा और खुले डुले पंजाबी देसी बंदे हैं, तो उन्होंने जैसे कहा उन्होंने कहा काज साहब तमाला पवा दितियां तुसी, इस गाने ने तमाला ते खारियां पूरा तमाला पा रहा है, सरकार एक गाना सुन के ते तुहानू सुनदे पे आ ते फिर दसण वास्ते कॉल दूजी वारी कीती है कि मज़े आ गए ने जनाब, तुहानू मज़े आ गए ने ते सानू भी मज़े आ गए ने, ज्यादा कहंदे ने मज़े लिया ना करो, ज्यादा मज़े ना लिया करो, मैं कहना ना लिया करो ज्यादा मज़े, नजरां लग जाणगियां नजरां। आंटी दीपा जी हमारे साथ इंतजार में है और एक और कॉलर थे हमारे साहब, वो कॉल करते हैं फिर कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर कॉल करते हैं फिर कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, नाम नहीं लेंगे उनका जब तक बात नहीं हो जाती उनसे, हम भी अड़ गए हैं, हमारी भी सुई अटक गई है, और जब हमारी सुई अटक जाती है फिर तो कम वक्त हम अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन मीन टाइम हम ऑफेयर कॉलर्स के साथ जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन तुसी किड़ा रंग दा सूट पाया दसो ते सही, की पता मैं आ ही जावा, बरल जड़ा भी पाया होगा सूट तुसी, थानू सूट सूट करदा।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Kullo Nafsin Zaikatul Maut.
2: Muslim funeral service mein kafan, dafan, phoolon ka intizam Islami shariat ke ain mutabik ghusl-e-mayyat ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke saath banwane ke liye bhi Muslim funeral service ka naam yaad rakhe. Muslim funeral service, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 723030, that's Bradford 723030.
3: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rusholme, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio, with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar, and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.
4: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
5: जी जनाब, वेलकम बैक. जी आई नो, खुश आमदीद. आप हैं, मैं हूँ, आप हैं और कोई तीसरा नहीं है हमारे बीच में. क्या मजे की महफिल है, बस मैं और आप और मैं. शावा चासा आ गई जनाब. कॉलर हैं हमारे साथ, बहुत सारे हैं, उनसे बातें होंगी. लेकिन पहले जो हमारे टेट में मरोड़ उठ रहे हैं वो तो हल्का कर लें अपना पेट. आपकी बातें, जब आप हमसे बातें करते हैं तो यकीन माने मरोड़ मरोड़ उठते हैं. आपके पेट में कभी मरोड़ उठे हैं? नहीं, खाने पीने की वजह से नहीं. कोई आपको राज बताए अपना, बातें बताए ढेर सारी, फिर जब तक आप आगे किसी को बता ना लें तो उस दरमियान जो आपके पेट में वो बातें होती हैं वो मरोड़ उठते हैं उनसे. अच्छा, मैं किसी को किसी की बात बताता नहीं हूँ, वैसे मैं बड़ा पक्का बंदा हूँ, राज मैं रखता हूँ. हाँ, आपके साथ मेरी यारी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, आपसे कोई बात मैं छुपाता नहीं. कौन सा किसी तीसरे बंदे ने सुननी है, आप पे मुझे यकीन है. मतलब जनाब, जो अंधा एतबार होता है ना भाई साहब, वो एतबार कर लिया काशिफ ने आप पे. क्या करूं, ठीक किया कि गलत किया? अभी तक तो आपने कभी मुझे धोखा दिया नहीं, वैसे मेरा कोई राज, मेरी कोई बातें आपने तीसरे बंदे के पास पहुंचाई नहीं है. तो जब तक ये एतबार आप मेरा तोड़ेंगे नहीं, मैं और आप और मैं ये राज और न्यास की बातें करते रहेंगे. चलें जनाब, अभी आपको कुछ बातें बताते हैं राज की. जनाब हमारे साथ आंटी दीबा जी रही, कहती हैं पोठी चावल बना रही हूं. जान मेरी निकाल ली आपने ये बता के. पोठी चावल, रेड किडनी बीन्स और बॉयल चावल, लाल लोबिया. भाई साहब खुद सोचे, क्यों बच्चे की जान लेने के पीछे आप पड़ गई हैं? किसने आपको मेरे पीछे लगाया ये बताएं. मतलब अगर आपने पोठी चावल बना ही लिए हैं तो आपको पता है मेरी कमजोरियों का. आपने भी दुखती रग पे हाथ रखना जरूरी था. अब मुझे बताएं, हम दोस्तों काशिफ करे थे की करे, ठंडा पानी पी पी मरे की करे. आंटी दीवा जी, खासो तो सही, पड़ी तो कुछ खाए हो. ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪੋਠੀ ਚਾਵਲ ਅਜ਼ਮ ਹੋਈ ਜਾਣ ਸੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੋਠੀ ਚਾਵਲ ਬਾਰਾਂ ਜਨਾ ਸਿਆਪੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਯੇ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਪੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਥਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਸਾ ਰੱਖਾ ਹੈ बहुत बहुत शुक्रिया ये गीत आपके लिए भी होगा और जनाब हमारे साथ रहे हिम्मत खान हिम्मत खान क्या खूबसूरत नाम है बड़ा आपका बड़ा ये जिसने भी तुम्हारा नाम रखा है ना हिम्मत खान बड़ा हिम्मत का काम किया है आप भी बड़ा शुगली बंदा है हिम्मत खान कहते हैं जनाब हिम्मत करके पहले क्या कहा आपने हिम्मत इकट्ठा किया फिर हिम्मत करके आपको खोल किया और नाम बताया आपने हिम्मत खान अच्छा ये बात थोड़ी फिल्मी सी लगती है लेकिन मेरे जो जितने भी दोस्त है बाब बहन भाई अपने शामिल होते हैं ना वो इसी तरह की बातें करते हैं उनको पता है काशिफ सीधा साधा है हिम्मत खान आपने गाना कौन सा बताया था हाय नहीं गाना आपने तो बताया नहीं आपने एक जोक सुनाया हिम्मत खाना वो जोक आपने मरने मारने पे से सुनाया है बड़ा मैं भी मेरा दिल भी थोड़ा पागल है और ये जो मुझे सुन रहा है ना मड़ा इनका दिल भी पागल है तो ये मरने मारने वाला जोक अगर नहीं होता ना तुम्हारा तो हिम्मत खान तुम्हारा जोक बहुत मजे का तो वो हम जरूर सब सुनने वालों को सुना था लेकिन मरने मारने का जोक नहीं सुना ना मड़ा कोई और जोक सुना था तो फिर हम भी सबके साथ शेयर कर पाता अब तुम्हारा इतना मजे का जोक वो हमारे पास ही रहेगा हम किसी को सुनाएगा भी नहीं सुनाने के काबिल भी नहीं है वो जोक और अब बताओ तुम हमारा पेट में मरोड़ ना उठे तो क्या उठे मड़ा अब जिसके साथ हम पूरे हफ्ते बाद राज की बात करता है उसको भी ये जोक नहीं सुना सकता है तुमने हमको फंसा के मारा है मड़ा लोग वैसे मारता है आमने सामने से तुमने घेर के फंसा के मारा है ना कुछ कहने के काबिल छोड़ा है और ना अजम करने के काबिल छोड़ा है तुम्हारा जोक कोई वेजिटेरियन जोक सुनाया करो ना मड़ा कुछ सीधा साधा सा जोक चलो जनाब ये तो हिम्मत खान हो गया हिम्मत खान तुमने हिम्मत करके जोक सुनाया पर हमारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि हम तुम्हारा जोक इधर जो है ना रेडियो पे सुनाए क्या करता है बड़ा अच्छा जनाब उसके बाद हमें दोबारा से सामिया की गोल आई सामिया कहती हैं कि जनाब सामिया आज मैं और आप और मैं इकट्ठे मिलके ये शो होस्ट कर रहे हैं कैसा आप ना ऐसी बात किया करें गैरों वाली कि जनाब मैं आपको बार बार कॉल कर रही हूं तो ये और वो छोड़ें वो और लोग होते हैं हमारा जो रख रखाव रखते हैं हिम्मत खान आपका जुबान हम क्यों बोलने लग पड़ा है आपका जोक फंस गया हमारे टेढ़ में अब आप हम कर शो के बाद इसमें रोटी डालेगा या जोक आपका रखेगा मुझे गुस्सा आ रहा है हमने आपका जोक सुना ही क्यों मतलब हमारा पेट उस जोक से भरा रहेगा तो हम रोटी कहाँ डालेगा अच्छा एनीवे सामिया आपने कहा कभी खुशी कभी गम का गाना मूवी से गाना लगाएं मैंने कहा मैं लगाता हूँ साथ ही सामिया जोर से चीखी मैंने कहा क्या हुआ सामिया कहती है कभी खुशी कभी गम का गाना लगाना है लेकिन वो कभी खुशी कभी गम गाना नहीं लगाना है वो बहुत रोने धोने वाला है तो मैंने कहा फिर कौन सा लगाना है तो ये गाना सामिया ने चुना है जनाब
6: हाँ जी बादशाह की देख रहे हो
5: तुसी की देख रहे हो
6: वन टू थ्री फोर
5: मैं आपको नजर आता हूँ आंखें बंद करके जो चेहरा नजर आए वो मेरा ही है ना मेरा ही है मुझे पता है हाय शावा जनाब दिल में कहे शावा शावा अगर आपको किसी का डर है और अगर मेरी तरह आप रब के सवा किसी से नहीं डरते हैं मड़ा

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.

आवाज नहीं आएगा बच्चे। क्या करता है भाई, कमाल करता है, धमाल करता है, वबाल करता है, पर जो भी करता है पकड़ा नहीं जाता है। चल वो गला खुश्क होता है ना तो बंदा जग से गलास में पानी डालता है, वो गला खुश्क हो जाता है बातें करते करते। बताएं फिर, कमाल हो गया ना, बातें करना आपने सिखा दी है वे भाई साहब। और जनाब क्या क्या चलता है दिमाग में, दिमाग क्या चीज है। बादाम खाने कल से बंद करूंगा भाई, पता नहीं कहां कहां दिमाग चला जाता है। अच्छा यहीं पे आपके पास आके दिमाग चलता है इतना। वैसे तो मैं धक्के लगाता रहता हूँ इस दिमाग को पूरा हफ्ता, लेकिन भाई साहब ये दिमाग, गाड़ियां होती हैं ना जो धक्के से भी स्टार्ट हो जाती हैं, भाई साहब हमारा दिमाग धक्के से भी स्टार्ट नहीं होता है। और आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा रानी। अच्छा अभी अभी फिर शरारत आ गई, देखें भाई साहब। ठहर जाएं रानी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहली बार हमें कॉल की और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कह रही हैं इससे पहले कभी आपने रेडियो पे कॉल ही नहीं की, फिर तो आपने कख भी नहीं किया। और जनाब ये खूबसूरत सा गीत, अगर आपके दिल ने आपको मजबूर किया हमसे बात करने के लिए, तो ये गीत आपके लिए नहीं, आपके मासूम से दिल के नाम। सुनिएगा फिर बताइएगा, अगर बताना चाहें दो बार।

0: जी जनाब, हमें कॉल आई हलीमा जी। हलीमा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारा शो और हलीमा ना आए ये कैसे हो सकता है। और हलीमा आपके लिए खूबसूरत सा गीत जनाब हम लगाएंगे, जो गीत हमें लेके जाएगा एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद फ्लैशबैक में क्लासिक हिट ऑफ द आवर में गाना होगा खूबसूरत सा, और वो खूबसूरत सा गीत आप जो खूबसूरत से अंदाज में खूबसूरत सी समातों के साथ खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ खूबसूरत से अंदाज के साथ आप हमें सुन रहे हैं, ये गीत आपके लिए होगा ब्रेक के बाद। जनाब इतनी सारी खूबसूरती हमने डाल दी, पता है किसके लिए? लियाकत भाई जान। लियाकत भाई जान ये गाना आप बेशक ना सुने, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने आपका गाना आज मिले हो कल फिर मिलना। अच्छा, लियाकत भाई ने बड़ा हंसाया, कहते हैं काशिफ भाई अगर दिमाग आपका बाकी हफ्ते स्टार्ट नहीं होता है धक्के से भी तो उसको जंप लीड्स लगाए। जंप लीड होती है ना, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी उसकी डेड हो जाती है गाड़ी की, कभी आपने जंप लीडें लगाई हैं अपनी गाड़ी को जंप स्टार्ट करने के लिए? तो जनाब लियाकत भाई जंप लीड्स भी ढूंढनी पड़ेंगी ना सरकार, जंप लीड मिलेगी तो लीड्स लगाएंगे ना जंप स्टार्ट के लिए। कौन देता है आजकल उधार अपनी जंप लीड्स किसी की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए? नहीं जी, कोई भी नहीं देता है, समझ गए ना आप। चले अगर किसी ने दी तो फिर हम जरूर जंप स्टार्ट करेंगे अपने दिमाग को, लेकिन फिलहाल फुली स्टार्ट है, उड़ रहा है हमारा दिमाग आपके से बात करने के बाद। लियाकत भाई जान आज मिले हो कल फिर मिलेंगे। जनाब कल फिर मिलने का वादा तो नहीं होगा, लेकिन गाना जरूर होगा आज आपके लिए। अच्छा, गाना हमने रानी जी से वादा किया था कि गाना लगाएंगे अपनी मर्जी का उनके लिए। गाना मैंने कोई और चुना था, लेकिन अब उनका नाम रानी है, पता नहीं उन्होंने सच बताया है या हो सकता है दोबारा कॉल आए और वो नाराजगी का इजहार करें कि आपको क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे थे। बड़ा फिल्मी से नाम है ना रानी। अच्छा, ऊपर से हमने उनको आंटी भी बोला, हमने कहा ये आंटी रानी आपकी आवाज को क्या हो गया, एक आंटी रानी है हमारी वो भी कॉल करती होती है। तो उन्होंने कहा केड़ी आंटी रानी, हाउ डेयर यू कॉल मी आंटी। मैंने कहा है, मैंने कहा सॉरी मुझे मिस्टेक हो गई, वो एक आंटी रानी है तो वो कॉल करती है, तो वो अक्सर जब मुझे रानी कहती है तो मैं कहता हूँ आंटी वो हमारी बड़ी है बुजुर्ग है, तो आप वो नहीं है तो मिस्टेक हो गई है ना। फिर आपका मूड कुछ ठीक हुआ, आप भी इस वक्त टाउन में हैं कहीं कहीं पे। रानी जी ढूंढिएगा हीरा जी, आपको मिले अगर हीरा जी। हमारी लिस्टर है, टूटियां कान में लगाई होंगी या ब्लूटूथ में सुन रही होंगी या स्पीकर पे भी लगाया हो, ये नहीं बताया हीरा ने दोबारा कॉल करके। तो अगर आपको कोई लगे ना कि दुनिया के मेले में या टाउन में कोई भी ध्यान से नहीं रौनक एंजॉय कर रहा, कोई सुन रहा है किसी की बातों को, तो समझ जाइएगा वो हीरा है और वो हमें सुन रही हैं। हीरा अगर आप सुन रही हैं, यकीनन सुन रही हैं, अगर आपको भी कोई मिले, कोई रानी मिले जिसका ध्यान मेरी तरफ हो, तो आप जेलस ना हुईगा, लड़ाई ना कर लीजिएगा आपस में कि आप काशिफ को क्यों सुन रही हैं, मैं अकेले सुनूंगी।
1: मेरी रानी
0: रानी
1: महल दबा दूंगा,
0: ये गाना हीरा के लिए नहीं।

0: जनाब रानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जवाब आया जनाब, आपने कॉल की, अच्छा लगा। अच्छा लगता है, थोड़ी छेड़छाड़ होनी चाहिए। अकेले हम ही छेड़छाड़ करते रहेंगे तो फिर बात नहीं बनती है। रानी जी, आपने वापस कॉल की और आपने कहा, काशिप जी आपने जो गाना लगाया हमने सुना। अभी हमने आपको एक जवाब में गाना लगाना पड़ेगा। ये आपके गाने का जो आपने हमारे लिए लगाया, अभी हम उसका जवाब देंगे और अभी आपको लगाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं जी, गाना तो हमने लियाकत भाई का लगाना है। आपने कहा नहीं ना, गाना लगाएं, ये इस गाने का जवाब है, बन जा मेरी रानी का जवाब है। ये मैं मेरे जेन में आया और हमने आपको इसलिए कॉल की, अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैंने कहा ठीक है जनाब, लगा देते हैं। लियाकत भाई हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। एक मर्द ही दूसरे मर्द का दर्द समझ सकता है। लियाकत भाई सब्र रखिएगा और दिल पे पत्थर रखिएगा और उस पत्थर पे एक पत्थर रखिएगा, मेरा नाम ऊपर लिख दे उस पत्थर पे, क्योंकि आपका भाई काशिफ जिस काम में पड़ गया है, इस काम में बड़े बड़े ख्वार हुए हैं और आप तो फिर मेरे भाई हैं। मैं ख्वार होऊंगा तो मेरे साथ मेरा भाई भी ख्वार होगा। रब ना करे आपको ख्वार जनाब। मजाक हंसी अपनी जगह, लेकिन लियाकत भाई जान समझा करे ना। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा भाई का दर्द। भाई क्या है, फंस आजमाइश में, भाई साहब आजमाइश में फंस गया हूं। तो गाना लगाएंगे हम ये वाला जो जवाब है रानी जी ने दिया है, पता नहीं किसको दे रही है, लेकिन गाने का जवाब दिया है उन्होंने, वो सुनेंगे हम क्लासिक हिट ऑफ द आवर में। एक फ्लैशबैक वाला गीत होगा रानी जी का जवाब।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: जनाब टाइम हो चुका है इस वक्त 3:50 और आप फ्लैशबैक में क्लासिक हिट ऑफ द आवर सुनेंगे, रानी आपका गीत और उसके बाद मेरे भाई जान, मेरे प्यारे से सोने मनमोने से लियाकत भाई का गाना होगा, आखिरी गाना आज का उनका फेवरेट। लेकिन अभी रानी जी आपका गीत सुनते हैं, आखिर है क्या इस गाने में।
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770-6923-788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127-473-5043.
7: Sunrise and Music!
5: Classic Hit of the Hour, brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback.

0: साहब वक्त ज्यादा है और टाइम थोड़ा है कुछ समझ लगी, वक्त ज्यादा है और टाइम थोड़ा है हमारे पास, करें क्या, सबको राजी करना है। बिल्कुल जनाब, ये खेल तमाशे तो चलते रहते हैं दुनिया में, लेकिन दोस्त और भाई रोज नहीं मिलते हैं, समझ गए ना मेरी बात गहरी है, गौर कीजिएगा लियाकत भाई जान, आपको नहीं भूले हम, ना जी ना, आपका गाना आपकी फरमाइश सर आंखों पे, और अभी मिले हैं लेकिन नेक्स्ट आवर में फिर मिलते हैं, बस आए और गए, आप गाना सुने
1: कल फिर मिलना,
0: आप सबके नाम
1: आज मिले हो
0: रानी जी, आपका जवाब अच्छा लगा हमें।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 4:06 हो गए हैं जनाब, पूरे के पूरे।
2: चांद छुपा
1: और जनाब जबरदस्त गीत होगा आप सब सुनने वालों के नाम, और हमें बहुत सारी कॉल्स आई इस ब्रेक के दरमियान और आपके लिए। बिल्कुल जनाब, चांद भी ढूंढ के लाएंगे, तारे भी तोड़ के लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड यू आर ऑन योर वे बैक फ्रॉम वर्क। यू जस्ट फिनिश्ड वर्क एंड यू वाज इन द टैक्सी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द टैक्सी ड्राइवर। आपने टैक्सी में हमारा सनराइज रेडियो बजता हुआ सुना और वहां पे आपने हमें थोड़ी देर सुना और उसके बाद आपने हमें अपने मोबाइल पे सुनना शुरू किया और फिर आपने कॉल की और आपने कहा वेल डन, you are doing a great job. First time I've been listening to you and वो काम की जितनी भी आपको थकावट थी, उकताहट थी, कहते हैं वीकेंड पे हमारा काम जो होता है, स्पेशली NHS का जो काम होता है, कहते हैं वो ड्यूरिंग वीक से ज़्यादा टफ होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो कहते हैं जब हम लॉन्ग आवर्स की शिफ्ट करते हैं स्पेशली वीकेंड्स में, तो उसके बाद हमारा दिल भी नहीं करता किसी से बात करें, जब तक हम जाके नींद अपनी पूरी ना कर लें। तो आपने समझाने की मुझे कोशिश की कि कितना टायरिंग और कितना हैक्टिक और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है NHS का। ऑफ कोर्स हम जब ANE में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं या फिर भी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, तो जनाब जितनी भी जिम्मेदारी का ये काम है और वो और कोई काम मैंने अभी तक देखा नहीं है। ड्राइविंग का काम भी बड़ा अच्छा है, बड़ा जिम्मेदारी का है, टैक्सी ड्राइवर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, सारे काम अपनी जगह पे, पर कुछ काम ऐसे हैं कि जहाँ पे आपके हाथ में किसी का जो है ना वो ज़िंदगी आप लिखने वाले ने, ऐसे लगता है कि आपके हाथ

में वो इख्तियार दिया हुआ है। एक बात की है मैंने, एक मसाल दी है। वैसे तो कुदरत उस रब के हाथ में है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिंदगी और मौत का एक खेल चल रहा होता है वहां पे, और बड़ा रिस्की काम होता है। विशाल थैंक यू वेरी मच। आपने कहा इस टाइम पे मुझे लगा नहीं कि मैं कभी किसी से बात करूंगा या किसी को कॉल करूंगा, जिस टाइम पे मुझे जस्ट अपने बेड की ज़रूरत होती है, एंड वेन एवर आई फिनिश माई वर्क एंड स्ट्रेट टू द बेड, यू नो, एट माई होम, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव इनफ स्लीप, एंड देन वेन आई वेक अप देन आई जस्ट मेक फ्यू कॉल्स और आई जस्ट गो आउट एंड अबाउ। लेकिन पहली बार है कि मैं अपने काम की शिफ्ट के बाद, लॉन्ग शिफ्ट के बाद, किसी को स्पेशली कॉल करके बता रहा हूं, और यही आपका क्रेडिट है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ये मेरे लिए एक सर्टिफिकेट होता है। जिस मान से, जिस प्यार से और जिस पैशन के साथ आप मुझे कॉल्स करते हैं, मैं उसको फील करता हूं। एंड यस, बहुत सारी रिस्पेक्ट जनाब मेरी तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से, आप सब के लिए, और खास तौर पे विशाल आपके लिए, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहली बार हिम्मत की और हमें कॉल की, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड ऑल योर कॉलीग्स एंड एवरीबॉडी वर्किंग इन एनएचएस, यू गाइस आर डूइंग अ फैब जॉब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग आफ्टर अस। Keep doing a great job and keep it up. And if you're still listening me and you haven't gone into the sleep, I don't think so. कि अब इतनी जल्दी आप सो गए होंगे, अभी आप सुन रहे थे हमें और बात हुई तकरीबन चंद मिनट पहले। सो बहुत बहुत शुक्रिया। गाना जनाब आपने खास तौर पे हमें रिक्वेस्ट किया था, आपने कहा आपकी फेवरेट मूवी है भाई साहब हम दिल दे चुके सनम, उसमें से आपने गाना सुनना चाहा, तो मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है ये गाना लगाते हुए, बहुत ही खुशी के साथ। I'm so proud of you and I'm feeling proud for me and my team doing a great job. So आप जैसे दोस्त अहबाब सभी listeners आते हैं, call करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। So I'm not only proud of myself, I'm proud of my whole team. They're all doing a great job right here in this studio from Sunrise Radio. You're listening on DAB 100.6 FM and 103.2 FM Cross West Yorkshire. अब लगता है बोलने की बोलती बंद हो गई है और गाना लगाना चाहिए हमें इससे पहले कि विशाल भाई जाके सो जाए। और आप दुनिया भर में सनराइज रेडियो डॉट एफ एम के जरिए सुन रहे हैं, तो आप हैं हमारे चांद, छुपे हैं बादलों में, या विशाल भाई की तरह अपने बेड में, या जहां भी आप छुपे हैं जनाब, आप सबके लिए ये खूबसूरत सा गीत आपके अपने काशिफ की तरफ से। मैं हूं आपका अपना काशिफ, आप चांद हैं, बस आपको देखने की जरूरत है हमारी नजर से। जब भी आपको कोई मेरी नजर से देखेगा तो कहेगा चांद हैं आप।

0: जी जनाब, जितने भी चांद हमें सुन रहे हैं, चांद बन के छुप के सुन रहे हैं या सरेआम सुन रहे हैं, ये गीत आपके लिए। दा मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और खूबसूरत से गीत के साथ, कुछ और खूबसूरत से नाम जोड़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
0: जनाब तारिक जुल्फी भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बड़ा अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। और जी जनाब, आपकी फिक्र, आपकी परेशानी हमारे लिए जो, और हमारी टीम के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे साथी प्रेजेंटर्स के लिए, आप जो दुआएं हम सबके साथ रखते हैं उसके लिए हम क्या कहें, रब ही आपको उसका अजर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये फिक्र, ये ध्यान, ये दुआएं अपने ही रखते हैं। तो ये गीत आपके लिए और आपके अपनों के लिए, आपके दोस्तों के लिए। गाना ये हमें मजबूरन लगाना पड़ रहा है, सोचा नहीं था। बस का जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप सोचते नहीं है, हो जाता है। क्या कहा मैंने? कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आप सोचते नहीं है पर हो जाता है। तभी आपको हुआ है, हुआ है कुछ ऐसा जो आपने प्लान ना किया हो पर हो गया हो। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, या हुआ और आपको पता नहीं लगा। हाय, कैसी बातें हैं मेरी, मुझे खुद समझ नहीं आती है। मैं खुद अपना सर पकड़ लेता हूं कि काशिफ ये क्या बातें हैं। अपनी बातों में गुम हो जाता हूं, बल्कि गुम सुम हो जाता हूं। पर मेरी हर बात के अंदर एक बात होती है, वही सारी बात होती है, समझने वाला कोई चाहिए बस। क्या आप समझेंगे हमारी बातें? नहीं, आप तो ना समझे, बोले हैं मासूम हैं मेरी तरह। बात कर रहा हूं किसकी? रानी, आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, उससे पहले जनाब हमें नाम लेना है। करीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, पहली बार आपसे बात हुई। आप टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं, और सभी टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी ये गाना होगा। जनाब मैंने सोचा नहीं था ये गाना टैक्सी ड्राइवर्स के नाम होगा। करीम भाई, आपकी आवाज़ बड़ी मेच्योर, बड़ी ही, आपके पास उम्र का तजर्बा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा आपको हमारी बातें सुन के अपनी जवानी याद आ जाती है। आप जवानी में मेरी तरह थे, खराब, इतने खराब थे आप। मैंने तो सोचा कि आप, क्योंकि ये बातों से लगता है आप बड़े मैच्योर और बड़े अच्छे थे, मेरी तरह के नहीं थे आप। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। आप बड़ा हंसे और आपने हमें भी बड़ा हंसाया। हाँ, ये वेजिटेरियन जोक है वो, हिम्मत खान आप ऐसे जोक सुनाया करें ना। अब मुझे पता नहीं आपने, करीम भाई आपने दिल की बात की, अपनी आप बीती कही, या जोक सुनाया। आपने कहा कि आपको अपनी जवानी याद आती है, तो मैंने कहा क्यों, आपकी बातों से तो लगता है आप अभी भी जवान हैं। तो आपने कहा नहीं यार, रब ने बचपन दिया और फिर वापस ले लिया। हाय, फिर रब ने जवानी दी यार काशिफ, फिर रब ने वो भी वापस ले ली। बहुत पैसा दिया रब ने, कहते हैं वो भी वापस ले लिया। कहते हैं फिर रब ने बीवी दी, पर यार बीवी दे के रब भूल ही गया वापस लेना। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया करीम भाई, आपकी बातों में अभी भी जवानी है, जवान लहजा आपका, जवान अंदाज आपका, और आपकी जवानी जनाब, नहीं नहीं आपको हमारी बातों से जवानी याद आती है, मुझे आपकी बातों में जनाब महसूस होता है कि क्या बात है, जवान हो तो ऐसा खुश मिजाज खुश अंदाज, काश आप मेरी जगह पे बैठे होते मैं आपकी जगह होता तो कितने सुनने वालों को मजे आते। हमें सुन के कहां मजे आते हैं, सिर्फ रानी को मजा आ रहा है। रानी है इस वक्त टाउन में और कह रही है मैं हीरा को ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे हीरा मिली आपको सुनते हुए तो मैं उसको पकड़ लूंगी। हीरा आप बच के रहिएगा आज, कोई एक तीर से दो शिकार खेल रहा है और वो है रानी। पहली बार महफल में आई है और एक तरफ उनकी निगाह हम पे और दूसरी तरफ हीरा को ढूंढ रही है कि कौन है जो टाउन में काशिफ को मेरे अलावा भी सुन रहा है, बल्कि कौन कौन होगा। रानी जी आप किस किस को पकड़ेंगी, किस किस के कान बंद करेंगी, किस किस के दिल पे पत्थर रखेंगी, पत्थर खत्म हो जाएंगे, इतने दिल हैं जो जनाब धड़कते हैं तेज हमारी बातों से, पता है हमें सारा जनाब, इतने काके भी नहीं है हम। इतने सादे भी नहीं है हम, हमारी बातें साधु वाली हैं जनाब। रानी कहती है कि आपने गाना लगाया फिर हमने उसका जवाब दिया, अब आपको गाना लगाएं फिर हम उसका जवाब देंगे, हमें जवाब आपका चाहिए, गाना बताएं जवाब भी गाना लगाएं। जनाब ये कम चल पिया तो बड़ी दूर तक जाएगा, एड्डा पेट्रोल जनाब साड़ी गड्डी च नहीं है कि असी एड्डी दूर तक जाइए, इस राह पे इतनी दूर निकल जाए, फिर आप जैसे होते हैं जो इस राह पे दूर लेके जाके छोड़ देते हैं, वापसी भी हम भटक जाएंगे खवार हो जाएंगे, बड़ी बार साढ़े नाल हाथ होया हूं नहीं असी ताड़ी गल्ला चाहते, मिठियां मिठियां गल्ला, ना जी ना हम नहीं इसमें फंसने वाले जनाब, इस जाल में हम नहीं आने वाले। महाराज रानी जी आपने हुक्म किया तो बस ये गाना शरारत

जी जनाब, मैं अकेला एक अनार सो बीमार और मैं कल्ला ते तुसी बना के रख दिता मैनू चला। जनाब अब आ गई है मैदान में सामिया। सामिया जनाब हमारी टिकटॉक की फॉलोअर है, हमें टिकटॉक पे फॉलो करती हैं। और जनाब एक और कॉलर आई, उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब जी, मिसेस मुगल आपकी बात हो रही है, बहुत शुक्रिया, सब आपको जानते हैं। आपने कहा काशिफ आपकी फोटो जो टिकटॉक पे आपने लगाई है माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाय, ये आपने मेरे लिए बोला है ना, चले आपको अच्छा लगा, अपनों को तो अपने अच्छे लगते हैं ना, ये गैर होते हैं जिनको हम जहर लगते हैं, गैर तो कोई होते नहीं है। हाँ चोरी छुपे कोई सुनते हैं नजर लगाने के लिए, बस जनाब बुरी नजर से रब आपको बचाए हमें बचाए। मिसेस मुगल बहुत शुक्रिया, आप बस टिकटॉक पे हमारी फोटो ही देखती हैं या वीडियोस भी देखती हैं, लगता है फोटो से ही काम चलाती हैं। चलें देखें जिस तरह से आपका मन आपका दिल खुश हो, मौजें करें। अच्छा जी, सामिया मैदान में आई, उन्होंने कहा कि जी दिलजीत दोसांझ का गाना पंजाबी वाला ये वाला लगा दें। मैंने कहा इससे पहले कि रानी जी फिर वापस आ जाएं, और अब नहीं हम रानी जी आपके हाथ में आने वाले, नहीं जी नहीं, हो गया बस, एक दिन में इतना ही होता है शुगल, इससे ज्यादा नहीं, हूं ना आया सी तुहाडे काबू। सुनने वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में, सानू तो साड़ी परवाह ही नहीं, सोचने दें। वो कहते हैं बंदे में कुछ हो तो कोई आपके लिए सोचता है, हम तो चाहते हैं आप सोचें हमारे बारे में, पर आप सोचते ही नहीं है। तुसी राणी जी के बारे सोच रहे हो, राणी जी आपको भी रब नजर से बचाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये गीत आपके लिए भी लेकिन खास तौर पे सामिया के लिए। और हलीमा जनाब वो भी हमें टिकटॉक पे फॉलो करती है, आज यहाँ कहती है मैं आपसे दूर हूँ। मैंने कहा वो क्यों, कहती मैं मतलब दूर नहीं हूँ, वैसे ब्रेडफोर्ड में हमेशा आपका शो सुनती हूँ, आज मैं ब्लैकपूल में हूँ। तो मैंने कहा जी दिल पास होने चाहिए, फासलों में क्या रखा है, सात समुंदर भी बीच में आ जाएं तो फिर भी बंदा दूर नहीं होता, दिल पास होने चाहिए। कहती है जनाब दिल से आप हमारे शाह हमारे पास हैं और ब्लैकपूल में इस वक्त तक मेरे ख्याल में यकीनन आप ब्लैकपूल में मौसम का फायदा उठाने पहुंची है। ले तुसी ब्रेडफोर्ड दी रौनक छड़ के, ब्रेडफोर्ड दी रौनक छड़ के तुसी ब्लैकपूल टुर गए हो, चलो कोई नहीं, जिथे तुसी जाओगे रौनक उत्थे होएगी, जहां अलीमा होती है वहां खुद ब खुद रौनक होती है, ऐसी रौनक की शख्सियत है। अगर आप भी रौनक ही हैं, आपके मिलने पे भी, आपको देखने पे भी, आपसे बात करने के बाद भी, आपको सुनते सुनते भी, आपको सोचते सोचते भी, कोई बेख्तियार मजबूर हो जाता है ये कहने पे, क्या कहने पे,

0: Music.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
0: Sunrise and Music!
4: तो जनाब घड़ियान पहुंची जुदाइयों की बरछोड़ों की आपसे दूर जाके आपके पास आपके दिल में रहने की घड़ियान पहुंची बहुत लुत्फ आया बहुत मजा आया लियाकत भाई आपकी आखिरी कॉल थी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का आपने कहा कोई सा भी गाना लगा दे अच्छा लगा मजा आया सिर्फ आपने एक बात कही जो मुझे समझ नहीं आई आपने कहा काशिफ जी तुसा सादे नहीं हो तुसा बड़े फनकार हो तो यहां तक ठीक था लेकिन उसके साथ आपने एक कहकहा लगाया तो फिर मुझे समझ आया कि आपने वाकई मुझे सादा नहीं समझा ये फनकार आपने कहा और साथ में कहका क्यों लगाया यह पूरा हफ्ता मैं सोचता रहूंगा सोच सोच के बावला होता रहूंगा कि मेरी सादगी पे आपने शक क्यों किया मुझ पे शक कर लेते मेरी सादगी पे क्यों शक किया आपने हाय मैं और मेरी सादगी चले लियाकत भाई खुश रहें आबाद रहें चाहे यहां रहें या मुजफ्फराबाद रहें बस खुश रहें अपने खर्चे पे ठीक है जनाब और जनाब दिल लगा के जान लगा के मन लगा के प्यार से खलूस से एक यकीन से एक एतबार से एक मान से एक एहसास से एक आस से जोड़ के जनाब आपके लिए एक महफिल सजाई कि आपका दिन बेहतरीन गुजरे आपका हफ्ता खूब से खूब तर गुजरे कोशिश की कि जैसे आपकी याद हमें सताती है पूरा वीक कुछ ऐसा कहें कुछ ऐसे कहें कुछ इतना कहें कि आपको भी हमारी याद जरूर आए एक आध बार सही या शायद हमारा वहम है बार बार ही सही याद तो आए आपको हमारी कभी फुर्सत में कभी मसरूफियत में कभी भीड़ में कभी तन्हाई में याद तो आए आपको हमारी बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का जिन्होंने कॉल्स की टाइम निकाला कोशिश की बात की हमारा दिल शेर का नहीं बबर शेर का किया हौसला बढ़ाया मतलब जनाब बहुत शुक्रिया हौसला वही बढ़ाते हैं जो इज्जत मान की कदर जानते हैं वो दूसरों को मान और इज्जत देना जानते हैं जो इसकी कदर जानते हैं वही दूसरों को जनाब मान देते हैं इज्जत देते हैं आपने बड़ा मान दिया बड़ी इज्जत दी बड़ा प्यार दिया बड़ा वक्त दिया रौनक आपकी वजह से थी मैं तो हकीर एक फकीर सा बंदा हूं बातें आपकी होती हैं, हाँ अंदाज हमारा था, अल्फाज आपके होते हैं और रेडियो आपका अपना सनराइज और मैं आपका अपना काशिप। जनाब कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए। मैं भी कोशिश करता हूं, पूरी पूरी कोशिश जरूर कीजिएगा कि आए तो दूसरों के चेहरों पे आपकी वजह से मुस्कुराहट आए। और एक बात आजमा के देखिएगा, आजमाइश शर्त है, गारंटी है मेरी, इस बात के लिए मैं गारंटी देता हूं कि दूसरों की जिंदगियों में से अगर आप तकलीफें, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, दुख मिटाने की कोशिश करें तो यकीन करें रब आपकी जिंदगी से आजमाइशें, दुख, परेशानियां, बीमारियां, ऐसे मौजज़े आपको दिखाएगा। रब के बनाए हुए बंदों की जिंदगियों में अगर आप आसानियां लाएंगे तो रब आपकी जिंदगी में ऐसे मौजज़े लाएगा आसानी पैदा करने के आपकी जिंदगी में कि आपको मेरी बात याद आएगी, आप हैरान हो जाएंगे। इस बात को चैलेंज लेके आजमा के देखें आज से अभी से। किसी भी इंसान, जितने भी इंसान आपसे वास्ते में हैं, गैर हैं, अजनबी हैं, रिश्ते में हैं, खून के रिश्ते में हैं, किसी भी रिश्ते में हैं या नहीं है, अजनबी ही सही, आप दूसरों की जिंदगियों में आसानियां लाएं, आसानियां बांटें, फिर देखिएगा अपनी जिंदगी में आपकी मौजज़े होंगे रब की तरफ से, रब की बनाई हुई मखलूक के लिए। जी हाँ, आसानियां पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, बस ये जिंदगी का मकसद बनाइएगा, फिर देखिएगा जनाब आपको वहां वहां से वसीले आसानियों के नसीब होंगे कि आपकी सोच में भी नहीं। दोबारा से कहूंगा, घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, बिछोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ी आन पहुंची, अपनी यादों में, बातों में, चाहतों में और सरकार सबसे बढ़के अपनी दुआओं में, मुझ ना चीज हकीर फकीर, जी हाँ मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, आपका और

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for Realizing the True Self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights, and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday, 11th and Saturday, 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday, 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
2: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: छुट्टियां
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
1: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: गलिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rochow, Manchester from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music, radio partner Sunrise Radio.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rosshow, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio, with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar, and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.
1: गलियां घूमी ते पैरां ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

दोस्तों, मैं कुलदीप माणक ते मेरा बेटा जोतवीर माणक, असी दोनों ने अमन हैर दिखाता एक गाना गाया। एक गीत जड़ा है, एक गीत है

0: Assalamu alaikum and namaste ka khush aamadeed. Welcome to Sunrise Radio 103.2 FM. Aapka host dost yahan bhi hazir hai. Mera number bhi aam hi hai. Till alam ka video sham aur aap sab ke naam Rang Mehfil ka program hai. And today is an amazing day, as you know. Today is a Sunday evening. Good evening to you all. And you're listening to Sunrise Radio 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, or Milton Keynes में हमारा प्रोग्राम सुना जाना. Very very soon is going to be launching on Derby in Middle में. और क्या कहने, and you can also download the Sunrise Radio app on Apple Play Store, on Google Play Store, and not forgetting on www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio. That is all about, and you have had one beautiful entry. और क्या कहने जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और काफी दोस्त अबाब अजीज हमारा साथ जुड़े हुए. थैंक यू वेरी मच. लाइनें यहाँ पे चमक रही हैं, धमक रही हैं. एंड आई विल इंट्रोड्यूस द हिट ऑफ द आवर. आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. और काफ़ी दोस्त अबाब अजीज आज जो है ना, एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल हो रही है, और अपने अपने घरों में माशाल्लाह बारबेक्यू कर रहे हैं. इतना खूबसूरत महफिल है और इतनी खूबसूरत वेदर है, और अपनी अपनी जगह पर पार्टी वगैरह हो रही है. वेलकम जी अनु, खुश आमदीद कहूँगा सबको भी. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पर हमने पेश करना है hit of the hour. Enjoy this wonderful tune, enjoy the wonderful weather, and enjoy wonderful drive, and drive very very very carefully. Aur apni apni hazri lagane ke liye number wahi hai 01274306666. Aur yahan pe do remember, line kafi busy ho chuki hai, aur aap sab doston ka pyar, mohabbat, chahat ke aap hame yaad kare. And don't forget all the chori chori छुपके छुपके लिखने as well. और ये गीत मैं आपके दोस्तों के लिए पेश करूंगा. एंड आई विल मेंशन योर ऑल योर नेम्स. खूबसूरत जिन नाम लिखा आ रहा है, और आपका नाम लूंगा थोड़ी देर के बाद. और यहाँ पे हिट ऑफ द आवर. एंजॉय
1: सनराइज रेडियो. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: That was the hit of the hour और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का और thank you very much, हमें अच्छा लगे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ भी हमने करना है कि time check.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: So right at the time in the studio in the quarter past 18 UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the Parvez Khan and Boba Shukriya from Dorsunga. I was in Manchester today on Boba Shukriya on Rush Dil mein. And thank you very much on Shrap Dorsunga, jo mere bain bhai shrati dorsunga, abab unke shrati mullakat hoi hai. Aur bada hi achha laga. Aur dil garden garden dil bag bag hoke. Boba Shukriya aap shrap ka bhi. Aur kaafi mujhe calls aa rahi hai, flash ho rahi hai. Aur thodi der ke baad mein, after the ad break, I will mention you all your name. मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं और यहां पे क्योंकि आर्ट ब्रेक करनी है, आर्ट ब्रेक के फौरन बाद आई विल मेंशन योर नेम्स एंड आई प्ले ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर यू एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. इतना खूबसूरत प्रोग्राम है आप दोस्तों के लिए और थैंक यू और थैंक यू वंस अगेन टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑन अप डाउन द कंट्री द ट्यून इन टू सनराइज रेडियो 103.2 FM और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rushall, Manchester from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zaheer Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.

Right, that was the beautiful ad break, and after the ad break we are here. Well, I am here, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का सबसे पहले कॉल आज हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और हमें अच्छा लगा जी। सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दन भी अरे लवली कॉल फ्रॉम वाजिद भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गिदन भाई हैं, हमारे पापी जन सुमित्रा जी हैं, वेलकम जी हैं, खुश आमदीद आपको भी। शाह जेलमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अतिका साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चौधरी फरियाज साहब हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। पाकिस्तान से आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच। और जो विद हेल्प नंबर मुझे फ़ोन करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जो मुझे पोलैंड से फ़ोन करें उनका मैं शुक्रगुजार ममनून हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आने वाला गीत मैं पेश करूँगा सोनी जी आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। और हमारे पापी जान सुमित्रा जी हैं और गिदन भाई हैं, ये गीत आपके लिए होगा। आई होप यू कैन एन्जॉय द वंडरफुल वंडरफुल ट्यून। शाह जेलमी साहब ये गीत आपके लिए होगा, एन्जॉय द ट्रैक, बहुत खूबसूरत गीत है, मुझे उम्मीद यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: Right, and that was a wonderful tune. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और अजीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ देने, थैंक यू वेरी मच, तारीफ करने का, हौसला अफजाई करने का, वेलकम करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच, आपने रोशन दिल से हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, और शबरेज भाई आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया, और क्या आपने सलाम और आदाब और वेलकम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने इतनी दुआएँ दी हैं और बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली आपने दुआएं दी हैं हमारे शकील साहब हैं, हमारे गिदन भाई हैं, सुमित्रा जी हैं, सब जो कॉल्स लाइव कॉल्स में आ रहे हैं, ऑन एयर और ऑफ एयर आ रहे हैं, उनको आपने सलाम पेश किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, आपने हमें याद किया, और माशाल्लाह आपने भी दावत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका दावत करने का और जवाब करने का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, थैंक यू वेरी मच। और आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आपको भी हम वेलकम कहेंगे, जी हां कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और माशाल्लाह वहाँ पर जाके भी और यहाँ पर भी, क्या हाल है, और आप वहाँ पर जा रहे हैं माशाल्लाह, खैर खैर से जाएँ और खैर खैर से वापस आएँ, और ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मेरे साथी हैं माशाल्लाह, और अल्लाह पाक मिशन को खुश रखे, शादाबाद रखे, और मेरे ख्याल में आप 4-5 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमें फ़ोन किया और हमें ये भी आगाह किया कि आप पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो मेरे भाई और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और हमेशा हम आपके दुआओं में हैं, और आप हमारी दुआ में हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, और थैंक यू वेरी मच। हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम आपको मिस करेंगे, क्या हाल है, और मैं आपका इंतज़ार करूंगा, और जब भी आप पाकिस्तान में जाएंगे वहाँ पे माशाल्लाह आपको भी वहाँ पे प्रोटोकॉल होगी आपके लिए, और ज़बरदस्त प्रोटोकॉल होगी, ठीक है, ये आपने मेरे साथ रबते में रहना, और रास्ता है तो रबता है, क्या रबता है तो रास्ता है, और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है, एंजॉय द ट्रैक एज़ वेल, और हमारे कम्युनिटी जी कह रहे हैं कि आपने गाना अभी पेश नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आर्ट ब्रेक आ रही है, वाह जी वाह वाह वाह, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को हम सलाम पेश करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, चौधरी फियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके शहर में था मैं वहाँ पर रशदेल में, क्या कहने जी क्या कहने, और बहुत अच्छा लगा, दोस्तों ने मुझे वेलकम किया और हौसला अफजाई किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और नो फकिन ऑल दोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारे साथ तावन करते हैं, मैनचेस्टर वाले, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का भी, ब्रैडफोर्ड वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लीज वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया लीज वाले, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और थैंक यू वेरी मच, और काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे दावत दी है, और मैं उनसे माजर चाह रहा हूँ कि मैं 2 हफ्ते जो ना थोड़ा पीछे चला गया हूँ, और इंशाल्लाह किसी रोज़ आपसे भी मुलाकात होगी, आपने माइंड नहीं करना, प्लीज़ आपने माइंड नहीं करना, ये ना हो कि और आपने कहेंगे यार मैंने इनको दावत दे रहा हूँ तो वो आप आ रहे हैं, क्योंकि मैं 2 हफ्ते के लिए बिज़ी हूँ, तो अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, शादाबाद रखे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एनीवे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फौरन बाद जो इन्होंने कॉल कर रखे हैं और कर रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, और उनका भी नाम लूँगा, और थैंक यू वेरी मच आपका भी।
1: Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
0: राइट वेलकम बैक लिसनिंग ऑल लिसनिंग सुनर रेडियो, और यहाँ पे मैंने गाना पेश करना है शबरेज भाई आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए और जो भी आपके दोस्त बाब अजीज़ हैं उनके लिए गीतों का, मुझे उम्मीद है यकीन का एंजॉय करेंगे। साजिद भाई फ्रॉम शफील से हैं, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर अख्तर जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँ, अनम रोज़ी इकरा निशा आपके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को आप इन्जॉय करेंगे, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, और मेरी प्यारी बहना है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना का, आपने हमें याद करते हैं और कर रही हैं, है. और तनवीर अख्तर जी, ये गीत आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के लिए होगा जिनका मैं नाम ले चुका हूँ, और उनके लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन का आप इंजॉय करेंगे. बड़ा ही खूबसूरत गीत है, इस गीत को आपने इंजॉय करना है.

Right, and that was a wonderful tune. और आपने enjoy किया. Moving on to another beautiful track. और ये मैं गीत पेश करने जा रहा हूँ हमारे चौधरी फरियाद साहब में. ये गीत आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत को आप enjoy करेंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी फरियाद साहब आपका, और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा में याद किया है और फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया. और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा और आपकी तरफ से होगा, तारा जुल्फी साहब के लिए होगा और उनकी पूरी टीम के लिए. मुझे उम्मीद है यकीन कि वो भी इन्जॉय करेंगे. तो किशा जी हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप ही का भी, और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और शबरेज भाई, ये गीत आपके लिए भी होगा. आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून एज वेल. और ये इनके दोस्तों के नाम हैं, चौधरी आसिफ रेव साहब हैं और परवेज खान हैं, महबूब लाइफ साहब हैं, तारक जुल्फी साहब हैं, जवेद मीर साहब हैं और तारक भट्ट साहब हैं, शकील साहब हैं, इरा खान हैं और आमिर शिजाज साहब हैं, चौधरी अहम उस्मान साहब हैं, शफीउल्ला हैं और वाजिद भाई फ्रॉम होटल स्कूल से हैं, और अयूब जवान साहब हैं और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हैं, शफीदीन हैं, ख्वाजा मोहम्मद शफीक हैं, अतीका साहिबा हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, जंगीर फ्रॉम डीज ब्रिज हैं. ये इन दोस्तों के नाम हैं और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. खुमी फ्रॉम चौधरी फरियाद साहब की तरफ से होगा और ये गीत. और नशीन जी, ये गीत आपके लिए भी होगा. शाहपरी जी हैं, जुलेखा जी हैं, ये गीत आपके लिए. फजाना जी हैं, ये गीत आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप इन्जॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें दोबारा फ़ोन कर किया. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और ऑल द खामोश लिसनर्स, डोंट फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वेल. और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद तो यकीन कि इसको एंजॉय करेंगे. मनीष साहब चक्की वाला सोने दे मनमोनी हो. ये गीत आपके लिए, आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद तो यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. वंडरफुल ट्यून फॉर ऑल दोज वंडरफुल कॉलर्स. एंजॉय.

0: Right, and that was what an amazing movie that was, a great memory to go with that one as well. Or aapne enjoy kiya, bahut shukriya aapka, we thank you very much. Hame acha laga Shahid Jalmi sahab, bahut shukriya aapka favorite geet tha aur aapne pesh kiya, aapke liye tha, specially aapke liye, aapne bhi awaaz kya choice aapki, thank you very much. Hame acha laga ye jo geet hai na, bada hi khoobsurat geet hai, isme koi shak nahi hai, it's a very beautiful track, bahut hi khoobsurat geet tha aur aapne enjoy kiya. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. आने क्या गीत है, वो ट्रेन जा रही है, आह क्या कहने, वाह वाह वाह क्या कहने, वो भी दौर था, वो ट्रेन का दौर था है, और वो गाना बज रहा है वहाँ पे, और उधर से अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं, आह क्या कहने क्या कहने. व्हाट अ ब्यूटीफुल मेमोरी, इफ यू नॉट सीन द मूवी यू नीड टू वॉच द मूवी इज वेल. और क्या खूबसूरत मूवी थी, और क्या खूबसूरत इसकी स्टोरी लाइन थी, और ज़बरदस्त. एनीवे यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे, और बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह खैर करे कि क्योंकि हमारे चौधरी फ़रियाद साहब आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल में कोई मसला है, इंटरनेट का भी मसला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी फ़रियाद साहब, वी ऑल लव यू माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी फ़रियाद साहब, वी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है, और बहुत प्यार करने वाले हैं, और सब उनसे प्यार करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज़ रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunday Radio Clock, it's 45 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are, keep it locked in, keep it locked down with the Parviz Khan. Baba Shukriya, aapka bhi, and thank you very much, aap mera program sunne. चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमें खबर मिली है कौन कौन हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, तो ये भी हमारी खुश नसीबी है. देखो वाह जी वाह क्या कहने. एनीवे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आई एम गोना बी प्लेइंग फॉर यू फ्लैशबैक गीत होगा, और वो कौन सा गीत होगा, मेरा फेवरेट गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून है, और छोटा गीत है, बड़ा ही प्यारा है, और क्या कहेंगे, धमाकेदार गीत है, बड़ा ही ज़बरदस्त है, और क्या कहेंगे, ख़तरनाक गीत है, बिलीव करें ख़तरनाक गीत है, और बड़ा ही नायाब गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून है. और आज कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, वट इज़ योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग. और बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, और आप रेडियो को भी साथ लेके पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, तो बड़ी ये भी हमारी खुशनसीबी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सबका हम सलाम पेश करता हूँ जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पार्क में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, कंजम्पर अखलास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पार्क में, लीज में, और बहुत ही शानदार पार्क है वहाँ पे, राउंडे पार्क, और वाओ व्हाट अमेजिंग पार्क, ब्यूटीफुल पार्क, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीपल एज वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग टू सुनर रेडियो ऑन 103.2 FM, और यहाँ पे छोटे से ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड.
2: कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, जे तुसा पुराना सोना बेचना है, बहुत चंगे रेट पर देने ने.
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता.
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-488-935.
1: ऋषि'स विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org. or www.guruma.com.
4: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rosshow, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas Kawal and Party, Harbhajan Talwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar, and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio. Sunrise and Music.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first had

राइट वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सनराइज रेडियो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दोस्तों का, थैंक यू वेरी मच। आई एम थैंक यू वेरी मच अजीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दानिश बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एनी वे आई विल प्ले दिस ब्यूटीफुल ट्रैक गोइंग आउट टू यू एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड एंड कोलिग्स, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा। तनवीर अख्तर जी आपके लिए भी होगा, अनम रोजी इकरा निशा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये गीत आपके लिए, सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गीत आपके लिए भी गा, फजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जारा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, थैंक यू वेरी मच। मनीष साहब चक्की वाला ये गीत आपके लिए गा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉल एज वेल। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। एंड दिस ट्रैक विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़ है, और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और अल्लाह खैर ही करे। और हम दुआ को हैं सब सुनने वालों के लिए, और जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्त अहबाब हैं, और जो ब्लॉक पूल में इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने कहा कि हम प्रोग्राम सुन रहे हैं ब्लॉक पूल बीच में, और रेडियो लगाया हुआ है और वहाँ पर प्रोग्राम सुना जा रहा है, और आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है, तो कह रहे हैं कि हम इंतज़ार में हैं कि लाइव कॉल का सिलसिला होगा तो वहाँ पर हमने वहाँ पर सुनेंगे ब्लॉक पूल में। वाह जी वाह, क्या कहने, थोड़ी देर आवाज़ ऊपर कर लेना, ठीक है ना, आवाज़ ऊपर आपने करनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। हमें अच्छा लगा ये भी सुन के कि अब आपने हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत ही दूर तक साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये भी सुन के। एम थैंक यू वेरी मच, यू मेड माई इवनिंग टू डे एज वेल, और बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एनी वे मूविंग ऑन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, और ये जो गाना है बड़ा ही नायाब गीत है, बड़ा ही खूबसूरत गीत है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। एवरी बॉडी इज़ यूनिक द ओन वे एज वेल, और ज़िंदगी को इन्जॉय करें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, अच्छा सोचें, अच्छा समझें। ज़िंदगी इज़ अ ब्यूटीफुल, इसमें कोई शक नहीं है, और इट इज़ अ ब्यूटीफुल, एंड इट ऑल डिपेंड ऑन यू, हाउ यू सेलिब्रेट द ज़िंदगी, हाउ यू इन्जॉय द ज़िंदगी, दैट वॉज ऑल अबाउट। और हमेशा ही मैं कहता हूँ, और आज भी मैं कहूँगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू एंड द पर्सन बिहाइंड यू एंड द पर्सन बिहाइंड यू। और वो भी बात हो रही है। एंड अब्दुल, आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून, बहुत खूबसूरत गीत है, one of my favorite tune. Wow, what a tune. This track will take me to the 9 o'clock news. Enjoy the track, and everybody tune in the sunrise. Ye geet aap doston ke liye, enjoy the track.

और यही गीत में पेश करेंगे। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये गीत आपके लिए भी होगा। और अतिकर साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। फजाना जी हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा। सिमी जी, ये गीत आपके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का भी, आपने हमारा साथ देने। थैंक यू वेरी मच।

राइट वेलकम बैक लिखने और लिखने रेडियो और बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमने रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मगरब की अजान पेश करनी है और वो भी हमारे लिए और सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ। और यहाँ पे यूके में बर्फ में अपने पे मकामी टाइम के देख के सुन के अपने नमाज अदा करेंगे। और यहाँ पे कंप्यूटर में कोई शो नहीं हो रही अजान, कोई मसला नहीं कि हम खुद पेश कर देंगे। और कि मेरे ख्याल में भाई भूल गया होगा, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, मैं हूँ ना, हम यहाँ पर टीम वर्क करते हैं माशाल्लाह। सुन्नत रेडियो इज़ ऑलवे फॉर ईच अदर एंड हैज़ बीन एज़ वेल एंड विल बी एज़ वेल। और यहाँ पे हमने पेश करने हैं मगरब की अजान ब्रैडफोर्ड यूके में। कीप इट लॉक्ड विद सनराइज़ रेडियो।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, और आपके लिए यहाँ पे हमने पेश करना है टाइम चेक, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट.
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunday clock, it's 12 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked and keep it locked down with the Sunrise Radio with the Parviz Khan. And यहाँ पे छोटी सी नन्ही में सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा. और यहाँ पे सब माशाल्लाह आ रहे हैं और सब मधु हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे हमने छोटी सी निक्की जी ब्रेक, निक्की जी नुन्नी मुन्नी चुन्नी की ब्रेक करनी है, और नालो नाल
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rushall, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio, with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar, and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music, radio partner Sunrise Radio.

0: लेडी एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिलसिला शुरू करना है लाइव कॉल का, और आप हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है, और ये हैं हमारे भाई, हमारे दिल जानी और दिल अजीज़, हमारे मोहसिन और चौधरी फ़ियाज़ साहब। वेलकम कहेंगे, जी आएँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और यहाँ पर जी बिस्मिल्लाह चौधरी,
1: अल्लाह पाक का शुक्र
0: मौला ने करम है, करम अब तक बात बनी हुई है, नाराज हो जन सारे सुनने वाले
1: साढ़े प्यार
0: क्या कहने बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया
1: और शुक्रिया जनाब,
0: बड़ी मेहरबानी। तो मैं कड़े बंदे ना कि ना कड़े सारे सलाम देने ने तुसाने गल करने नोटा नहीं गल करने सने तो वह आने नोट भेजने तुसा दसो कि पुराने नोट मिल सकने थोड़ी या नए नोट मिल सकने की
2: शबरेज
0: भाई ने प्रोग्राम सुनने पे छुट्टी की आज छुट्टी की स्पेशली तुमने वजह प्रोग्राम दे वजह
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया शमरेज भाई ना जी
0: जी
1: उनके ऐसा नहीं दरबार में खलूस राल सलाम दियो जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रामा असा वैसे ही जेडी सच्ची गल है ना मेरे वैसे ही दौलत है
0: जी
1: के असा जिस तरह से प्रोग्राम में जिसने सारे तरफों ने सारे ने तरफों मेरी हौसला अफजाई होनी है चांस मिलनी है मेरे वैसे यही सब की मेरी यही दौलत है मोहतरमा अमर भाई ने
0: बाबूलाई
1: साहब ने दसर साहब ने
0: हाजी
1: सलीम साहब ने चौधरी मनीर सिंह चक्की वाले ने शकील साहब ने हीरा भाई ने और वाजिद भाई ने उन्होंने वैसे में दुआवा अजूब चौहान साहब ने जावेद मीर भाई ने अब्दुल कुजुम भाई ने नवीद राणा साहब ने जनाब तारक बार साहब ने और सारे दोस्त चौधरी मुजफ्फर साहब ने चौधरी आसफ रियासत साहब ने और जनाब मोहतरम डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने चौधरी रुखसार साहब ने अहम खान साहब ने नदीम मंसूर साहब ने राजा वकार साहब ने मेरे बड़े प्यारे दोस्त ने राजा गुरनैन साहब ने चौधरी मनीर सैन मेरा भरा और जफर अली हीरो साहब ने महमूद साहब ने राजा शोएब साहब ने और तुसा ने अकराम भाई ने पलवान साहब ने और जेडे तुसा पिछले हफ्ते दसा के बड़ी खूबसूरत शायरी और जड़ा मैं उन्होंने अनुमान पढ़िया के दुनिया तू किस तरह गए ने किस तरह उन्होंने अल्लाह पाक ना दिल लाई रखा और शायद ही ना लाई रखा
0: जी,
1: ये भी बड़ी गल होनी है।
0: बड़ी गल होनी
1: है लोग कदे कदे दुनिया देखने
0: जी जी
1: ते लिख रहे ने के बिस्मिल्लाह करा हक दी उसनों पहचान होंदी।
0: आहा क्या कहने
1: हक दी उसनों
0: पहचान होंदी
1: वाकिफ राज जो अपने असूल दाई
0: वाह
1: उसका मजहब दे दीन ईमान सच्चा दामन गिर जो लखते बतूल दाई
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: उसनों कोई गम मैशर मैदान दा नहीं अहले तालब जो जाते मकबूल दाई
0: वाह
1: ओ मरदूद सदीक मरदार मरसी मनकर जेड़ा कोई आले रसूल दाई
0: आहा क्या कहने
1: दुनिया ना किसी दी यार बन दी कर लख तरीके प्यार करिए फिर भी मित्र ना दुनिया मकार बन दी
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: लेंदे दिल तोड़ मरोड़ देंदे गल प्यार वाली जिन चार बन दी सदी चौथवी बिच वीरान आखे कदू मशूकां दी जात वफादार
0: बंदी आए हाय हाय क्या कहने क्या कहने वाह
1: आखिया प्यार पाके फिर कुछ ना पेंदा प्यार पाके फिर कुछ ना पेंदा दिलदारां दिल यारां दिल जानियां संग टुट जांदे प्यार ना तोड़ चढ़दे अकल मंदा नी अकल नदानियां संग
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: अखे तकियां जिगर ना खून चुकिया पाया प्यार जद अखां मस्तानियां संग कदी फुल ना समझ वीरान अपना पाइये प्यार ना चीजा बेगानियां संग
0: हाय हाय हाय क्या कहने वाह
1: ये लिखने के यारा गमखारा होए याद तेरी कटदी रहंदी जिगर दी तीर बन के नाले ख्वाबा ख्यालां में यार वेले फिरदी रहंदी है तेरी तस्वीर बन के
0: वाह जी वाह बहुत खूब
1: बस जा बस रस जा दो पल नाल मेरे मैं तेरा तो मेरा अखीर बन के याद रख वीरान बस अशर तोड़ी तेरी याद विच फिर से फकीर बन गए
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: अच्छा मुड़ एक बार दिल जानिया होए मुड़ एक बार दिल जानिया होए सीने विच जुदाई ने दाग रेंदे
0: वाह
1: गल कोई अकल विच समझ विच आमदी नहीं सोचा कर कर कुछ दिमाग रेंदे
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: तू की गया है बाग दे मालिया वे तू की गया है बाग दे मालिया वे आपे वसल बिन तरस दे बाग रेंदे
0: वाह
1: अल्लाह कसम वीरान दे विच सीने ओए तेरियां यादां दे बलदे चराग
0: रेंदे वाह वाह क्या कहने बहुत खूब
1: अपने पुन दी सौगात सारी सर कुटदी पुरदे दर्द सजरे लगदी अख न पल दी राग सारी
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: आख्या एवं किसी नु क्यों बना मुजरम आके मुकदी नसीबा ने बात सारी मिलिया सुख ना कोई भी अली हमजा कट गई गमा ने विच याद सारी
0: आय हा हा हा क्या कहने
1: आखिया हसदा वसदा चंगा जहान अंदर हसदा वसदा सा चंगा जहान अंदर कर गया तबाही इंसान कोई ना थी खबर मेनू बेखबर सा मैं तोड़ दिल दे गया अरमान
0: कोई वाह वाह क्या कहने
1: सारी उम्र दा साथी बनाया जिस सारी उम्र दा साथी बनाया जिसनु ऐसी दिल दा वक्ती मेहमान कोई ऐसा वक्त उजरे अली हमजा और ना ही असली जा रहे यार निशान
0: ने कोई आय है क्या कहने क्या कहने
1: अच्छा फैस है बछोड़े नहीं मार लोगो फैस है बछोड़े नहीं मार लोगो सब सबर नहीं कर अखीर दिसी
0: वाह
1: कुछ भी हाथ कर गया दिलदारे अपना मैंने कुछ मार मेरी तकदीर दिसी
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: ओके मदोश मदोशियां विच ओके मदोश मदोशियां विच अपनी हालत भी कर की अखीर दिसी बन कफन विच करता अली हमजा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਨੀ ਸਜਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ
0: ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ
1: ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਬੋਲ ਅਨ ਬੋਲ ਇਧਰ ਬੋਲ ਅਨ ਬੋਲ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਇਧਰ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਗੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੁਫਤਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇਧਰ ਕੀ ਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹ ਕੇ ਸਵਾ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਹਰ ਦਮ ਖਿੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ
1: ਆਖਿਆ ਉਧਰ ਪਗਰੇ ਨਾ ਦਿਲ ਜ਼ਮੀਰ ਕੰਬਿਆ ਇਧਰ ਗਮਾਂ ਨੀਆਂ ਤੁਰਕ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਧਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਇਧਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਰ ਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਰਾਂ ਨੀਆਂ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਨੇ
1: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਕ ਆਜ਼ਾਦ
0: ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੂਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾ
0: ਅੱਛਾ
1: ਲਿਖਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਤਰਫ ਮੇਰੇ
0: ਆਹਾ
1: ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਤਰਫ ਮੇਰੇ ਜਲਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਲਾਣ ਚੰਗਾ
0: ਵਾਹ
1: ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਦਰਦ ਫਰਾਕ ਤੇਰੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚੰਗਾ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
1: ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਗਮਾਨ ਚੰਗਾ ਉਹ ਲੱਭ ਆਖਰੀ ਦਮ ਜ਼ਮਾਨ ਚੰਗਾ
0: पसंद किया और सलाम पेश किया आपको माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुम आए हो तो बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया नवादश मेरे भाई की और शबरेज भाई तुम कहने वाह वाह वाह वाह करने पे ने तब माशाल्लाह उन्होंने शुक्रिया अदा करने
1: जी
0: वालेकुम अस्सलाम जी जी
1: लिखने ने के सिद्दकू जेड़े होण वफा वाले
0: आहा
1: ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਹੋਣ ਵਫਾ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੱਕਿਆ ਪਾਸਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ
0: ਵਾਹ
1: ਕਦਰ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣ ਰੱਖਦੇ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ
0: ਸਾਡੇ
1: ਰੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੁੱਪ ਯਾਰੋ ਵਕਤ ਲੱਦਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ
0: ਆਉਂਦੇ
1: ਨਸਲੋਂ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਮੁਰਦ ਬੇਰੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਸਾਰਦੇ ਨੇ
0: ਵਾਹ ਚੋਦੀ ਵਾਹ वाह
1: ठीक है जनाब
0: बड़ी मेहरबानी सर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शबरेज भाई कह रहे हैं जाना दियो कोई बात नहीं तो नेक्स्ट खबर आइए दोबारा आइए ठीक है बड़ी मेहरबानी शबरेज भाई आज मूड से बैठे हैं प्रोग्राम सुनने में माशाल्लाह क्या कहने बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी उनका शुक्रिया करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट खबर इंतजार कर नेक्स्ट खबर इंतजार कर ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया ये आपके बड़ी मेहरबानी सर बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी सर आप सर आखो भाई सर आखो सर आखो भाई मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह अल्लाह रब रखा वाह ये थे हमारे मित्र हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जिनकी मैं तारीफ करूं कम है और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमें अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे वेलकम कहेंगे जी हाँ कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे साथ बिस्मिल्लाह कहेंगे क्योंकि हमारा साथ नदीम मंसूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं गिदन भाई हैं हमारे पापी जान सुमित्रा जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया सबका भी और आप भी कोशिश कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका दोस्तों का जो हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी
2: छापा कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सोना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
4: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rochow, Manchester from 12 noon till 9pm on both days. Featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.
0: Sunrise Music. राइट लिसनर्स यू आर लिसनिंग टू सनराइज़ रेडियो और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जिनकी मैं तारीफ करूँ कम है और नदीम मंसूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं वेलकम कहेंगे जी हाँ कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु
5: शुक्रिया
0: आपके लिए जी
5: चन चढ़े आते निक निकलो
0: हाय हाय
5: चन चढ़े आते निकी निकी लो
0: वाह
5: चन्न

तेरी गली गली खुशबू, माया निका निका हसदाए, सोना निका निका हसदाए, ओ माया निका निका हस

चन चढ़े आते निकी निकी लो चन चढ़े आते निकी निकी लो काले रंग दी परांदीए काले रंग दी परांदीए हस के तक माया जिंद मुकदी जांदी ए वे हस के तक माया जिंद मुकदी जांदी ए चन चढ़िया

कद दूर जुदाई हो सी, कद दूर जुदाई हो सी, कद दूर जुदाई हो सी, ओ कद दूर

0: दिल किस वेले जाई हो सी, ओ किस वेले तू मिल से, दिल किस वेले जाई हो सी, चन चढ़े आते निकी निकलो, चन चढ़े आते निकी निकलो, स्टेशन दिया दो लेना, स्टेशन दिया दो लेना, स्टेशन दिया दो लेना, स्टेशन दिया दो लेना, दिल विच तू वसने असां दुनिया तो की लेना,
1: वाह,
0: दिल विच तू वसने
1: वाह
0: वे असां दुनिया तो की लेना, चन चढ़िया ते निकी निकी लो, चन चढ़िया ते निकी निकी लो, चन चढ़िया ते निकी निकी लो, चन चढ़िया ते
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत, वाह। जैसे हमारे इरा खान मेशा मेरे प्रोग्राम में मेशा एक दफ़ा आए थे और उन्होंने कहा कोई छोड़े, आई मैंने कोई छोड़े, क्या कहने जी, कोई छोड़े नहीं, और बड़ा ही ज़बरदस्त था और इरा खान साहब की याद आ गई, और बहुत बहुत शुक्रिया इरा खान जी, ये आपने हमें तोहफा दिया और कोई छोड़े नहीं, क्या हाल है, और बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्या अंदाज़ है, बड़ा ही खूबसूरत आपका अंदाज़ है, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का आप आए और इतना खूबसूरत है, और आपका शुक्रिया अदा करें, हमारे वाजिब भाई शुक्रिया अदा करें, माशाल्लाह वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो भी हमें फ्लश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना खूबसूरत मैया टप्पा सुनाया और बड़ा ही मशहूर मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट आवर में आपको टाइम हुआ तो आप आ जाना और एक और बॉलीवुड का गाना सुनेंगे और हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, और वो बात नहीं करनी है, ठीक है, आप समझदार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, वाह, क्या कहने जी, क्या कहने, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमारा साथ देने और यहाँ भी हमारा साथ देने, हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज और हमारे गुरु जी हैं, उनके वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, और यहाँ पे सोने हो तो मन मोने हो, की हाल चाल है, तुम ठीक ठाक हो, सही ठीक है आपकी मेरे गुरु जी,
2: एकदम ठीक ठाक भाई जान, आप कैसे हैं,
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और आपके चाहने वाले हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह, और शमा जी आपको सलाम पेश कर रही हैं और उन्होंने आपके लिए और बाबी जान को सलाम पेश किया है और मैनचेस्टर से वो हमारा प्रोग्राम सुन रही है माशाल्लाह जी,
2: शमा जी को भी हमारा बहुत बहुत सलाम,
1: वालेकुम अस्सलाम जी,
2: सबसे पहले हम सलाम भेजते हमारा शकील भाई बाली वाला
1: जी जी,
2: हमारा जावेद मीर भाई है, मोहम्मद अनीफ भाई है
1: जी जी,
2: वाजिद भाई है, साजिद भाई है
1: जी,
2: हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद भाई है, सज्जाद पहलवान है, इकबाल भाई है, पापा शफीक है, डॉक्टर मलिक साहब है
1: जी,
2: मोहम्मद रफी जी है, फिर नवाब परवेज खान है
1: जी,
2: हमारे सबीना खान है
1: जी,
2: आशिया जी है, अतिका जी, सलीना जी, सीमित जी, रेखा जी, हमीदा जी, सितारा जी, मिस्टर मिसेस पटेल, जो जो उनके सबको हमारा बहुत बहुत सलाम,
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: अच्छा तो ये आपकी फरमाइश में आपने बोला था वो गजल गुलाम अली साहब की,
1: हाँ मिस्टर मिसेस पटेल उन्होंने फरमाइश की थी और पिछले दो तीन चार हफ्ते होंगे मेरे ख्याल में, बिल्कुल ज्यादा होंगे, तो उनका वो इंतजार में थे और सिमी जी उनकी फैमिली ने ये फरमाइश की थी जी।
2: अच्छा तो ये मैं कोशिश करता हूँ और यही हम नाम करते हैं आशिया जी और अतिका जी की
1: जी जी जी,
2: तो ट्राई करता हूँ, हम तेरे शहर में आके हैं,
1: क्या कहें
2: मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।

सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, अपनी आंखों में छुपा रखे है जुगनों मैंने, अपने आंखों में छुपा रखे है जुगनों मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे है आंसू मैंने, मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह।

0: सुन ले आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह
1: वाह वाह वाह वाह
0: तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह।

0: सोए इकरार किया ही क्यों था, देव पा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवाला का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। थैंक यू।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और हमारी प्यारी बहना भी प्रोग्राम सुन रही है और आपका शुक्रिया अदा करें, अशर्मा जी हैं और उन्होंने कहा वाह वाह वाह वाह वाह कर रहे हैं और फूल उन्होंने भेजे हैं आपके लिए, तोहफे भेजे हैं माशाल्लाह, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की आपकी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। वो काम पे हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं माशाल्लाह, वो भी चोरी चोरी छुपके छुपके। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप आए और हमें अच्छा लगा। और हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ देने हमारी पापी जान हैं, सुमित्रा जी हैं, वो भी बहुत शुक्रिया, उनका बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाती हैं। और पिछले प्रोग्राम में अब्दुल क्यूम साहब ने उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है उनके गाने की, और वही गाना आज लेके आएंगी डेफिनेटली, और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: Right, time in the studio is 45 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep a lockdown with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी निक्की सी ब्रेक होगी, आपने कहीं भी जाना नहीं है, keep a locked. Sunrise Music.
3: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rosshow, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio, with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar, and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio. Sunrise
4: Music. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
6: Na, baate karna, bada acha lagta hai.
1: Right, welcome back. Listener, you're listening to Sunrise Radio on your number one hit music station, Sunrise Radio. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो मैनचेस्टर वाले हैं हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे भाभी जान सुमित्रा जी हैं, और वेलकम कहेंगे, जी आए कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सद बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, हाउ आर यू डूइंग? हमारी बहुत ही खूबसूरत भाभी जान सुमित्रा जी, आप ठीक हो? सही ठीक है आपकी? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम हमारी दुआ आपके साथ है, और देखो आपके कितने चाहने वाले हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। और शर्मा जी आपको सलाम पेश कर दी, दोबारा उन्होंने मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। जी
7: सबका नाम ले
1: दो, सबका नाम ले
7: लें। हमारा शकील भाई बनली वाला, जावेद भैया है, साजिद भैया है, सज्जाद पहलवान भैया है, और इकबाल भैया, पापा शफीक भैया, डॉक्टर मोहम्मद रफी भैया
1: जी, कयूम साहब, कयूम, अब्दुल कयूम,
7: इसको भैया को भी मेरा स्पेशल सलाम।
1: वालेकुम सलाम,
7: गाना अच्छा लगा।
1: थैंक यू। बहुत इंजॉय किया, काफी दोस्तों ने इंजॉय किया गाने को, आपने बहुत खूबसूरत गाना गुनगुनाया आपने। जी जी,
7: पुराना गाना अच्छा लगता है।
1: जी जी जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। जी जी,
7: हमारी सच्ची सहेली सबको मेरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम। उन्होंने फोन किया था, वो कहते हैं कि वो फिलहाल बीमार हैं, तो वो कोशिश करेंगे प्रोग्राम में शिरकत होने की, इफ नॉट देन नेक्स्ट वीक वो आ जाएंगे। जी जी,
7: उसको भी, अतिका जी को भी सलाम, सलीना जी को, सिमी जी को, रेखा जी को, महमूद, हमीदा जी को, सितारा जी को, मिसेस पटेल को, जी को भी स्पेशल सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
7: अच्छा अच्छा लगा वो सुनिए रेडियो शमा जी।
1: जी जी, शमा जी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मेरी बहुत प्यारी बहन है। जी जी, हाँ नहीं नहीं, आपके पास साथ बहुत अच्छा था, उनका साथ तल्लक है। जी जी, हाँ जी जी, उनके साथ आपके साथ बहुत अच्छा तल्लक है माशाल्लाह, बहुत बहुत पुराना तल्लक है। जी जी, ऐसे ही वो मुझे कह रहे थे। जी जी,
7: सबको मेरा सलाम, नमस्ते।
1: जी जी,
7: जितने लोग आते हैं इसको भी मेरा सलाम।
1: जी,
7: तो भैया ने आपने बोला ना कि इसको वो पुराना गाना जो मैंने गाया था।
1: जी जी,
7: वो फिल्म अनपढ़ का था।
1: अनपढ़ का था। जी जी,
7: कभी भैया आपके लिए मैं गाना गाती हूँ वापस।
1: जी,
7: कोशिश करती हूँ ये सेम गाना। ने प्यार किया बरू,
1: वाह,
7: जफा करे मैं वफा करूं,
1: वाह,
7: वफा की काम न आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं,
1: वाह,
7: किसी ने प्यार किया करूं,
1: वाह,
7: मुझे

0: यही जम्मू मेरी जिंदगी, इसके दिल से कैसे जुदा करूं, किसी ने प्यार किया जो न बन सकी मैं वो बात हूँ, तो न खत्म हो मैं वो रात हूँ, जो खत्म हो मैं वो रात हूँ, ये लिखा है मेरी ईद में, यूं ही शम्मा बन के चला करूं, ने क्या किया तो न किसी के दिल की हो आरज़ू, न किसी नजर की जुस्त जो, न किसी नजर की जुस्त जो, मैं तो फूल हूँ जो उदाए, न बहार आए तो क्या करूं, इसी ने प्यार की आपको, जो जफा करे मैं वफा करूं, जो भी काम न आपके तो वही कहे कि मैं क्या करूं,
1: beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. और शमा जी हमारी प्यारी बहना वो कह रही हैं जबरदस्त, अश्मिता जी आपका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने फूल भी वगैरह भेजे. वालेकुम अस्सलाम जी,
2: सबको मेरा बहुत बहुत सलाम.
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया.
2: तो मैं अभी दूसरा गाना
1: गा, कोई लाइन? ना, ना, ना, वो तो लाइन पे है, तो आपके पास अभी जी जी गाना गा लें, कोई कोई मसला नहीं, गाना गाएं. जी जी गाना गाएं.
2: दूसरा भी
1: जी जी.
2: ब्लैक केट का है गाना.
1: जी जी जी.
2: सबके लिए मेरा, जो जो मेरा पसंद करता है ना.
1: जी जी. वाह जी वाह, क्या कहने.
2: मैं तुम्हें से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम लगान दोगी मुझे इस बार क्यों है. मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम लगान दोगी इस बार क्यों है. मैं तुम्हें से पूछती हूँ, मुझे क्यों पुकारती है, ये जवाब जवाब चाहे, मुझे मिल गई कहाँ से, ये हंसी हंसी अदाई मेरे दिल पे आज
1: आई,
2: बहार क्यों है, मैं तुम्हें से पूछती हूँ, जो कदम उठा रही हूँ, जो कदम बहक रहा है, मुझे मिल तुझे कहाँ, क्या दिल तड़क रहा है, मेरा दिल तड़क रहा है, मेरे दिल पे हाथ रख दो, तुम्हें इंतजार मैं से पूछती हूँ, तुम सामने हो मेरे, जिधर नजर उठाऊं, जिधर नजर उठाऊं, तुम भूल ना बिछाओ, कभी ना भूल पाओ, कभी भूल न पाओ, मेरी जिंदगी में शामिल मैं नहीं बात करूंगे, मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम लगान दोगी मुझे एक बार क्यों है, मैं तुम्हें से पूछती हूँ.
1: वाह वाह वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका शुक्रिया अदा करें आपको सलाम पेश करें अतीका साहब हैं वो आपका सलाम पेश करें उन्होंने तारीफ की अभी
2: जी
1: वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाए बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है और बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू राइट दैट वॉज हमारे गुरु जी गिदन भाई और हमारे स्मिता जी हमारे पापी जान बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी कि आप आए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद रफ़ी साहब हमारा साथ दे रहे हैं हमारे दिल अजीज़ हैं बड़े प्यारे प्यारे हैं और जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है और इनको भी हम वेलकम करेंगे नेक्स्ट आवर में क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है इस आवर का और हमारा साथ दे रहे हैं एम खान जी भी हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी क्योंकि हम इनके से गाना सुनेंगे और बड़े प्यार के साथ बड़े अदब अदाब के साथ हम गाना सुनेंगे क्योंकि इन्होंने हमें टाइम दे रहे हैं वक्त दे रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कहूँगा कि जल्दी करें ये करें वो करें तो इट्स नॉट नाइस एज वेल तो अभी तीन मिनट में क्या होगा कुछ भी नहीं होगा तीन मिनट में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आवर में हम दोनों को लेके जाएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों का इन्होंने इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी जो पीछे आने वाले हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं ममनून उनका सबका भी थैंक यू वेरी मच है कि आपने हमें कीमती वक्त दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे हमने ये गीत पेश करना है अंदेश ठक विल टेक मी टू द 10 o'clock न्यूज माई गॉड माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी थैंक यू वेरी मच आप हमारा साथ रहें और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ऑल द खामोश लिसनर्स नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छिपके छिपके लिसनर्स ऑल द खामोश लिसनर्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी

राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम बॉबे। शुक्रिया आप दोस्तों का, और यहाँ पे दैट वाज द हिट ऑफ द आवर, आपने इंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, एंड दैट वाज फॉर ऑल ऑफ यू जो हमारा साथ देने, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।

0: आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुन रहा हूँ।
1: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारा
0: दिल जो है वो क्या कहते हैं, बाग बाग हो रहा है,
1: ग्रीन ग्रीन हो रहा है, बाग बाग हो रहा है, वाजी वाह, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
0: ठीक है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र, करम करम आप आ गए, और हमें क्या चाहिए।
0: बड़ी मेहरबानी सर
1: जी।
0: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, मुझे सुनने वालों पे लाखों सलाम। सभी से जुदा जिसका अंदाज है,
1: वाह
0: फलक ता जमीन जिसकी परवाज है,
1: वाह
0: वही जिन पे हमको नाज है, वही जिन पर सारे सनराइज रेडियो को नाज है।
1: वाह जी वाह,
0: परवेज खान जी आप ही की तो वो आवाज।
1: आहा, क्या कहने, मेरा मजा आ गया, चश स्वाद आ गया जी, स्वाद आ गया, क्या कहने, चश आ गई जी। वाह जी,
0: और ये गीत पेश करना चाहता हूँ आपके लिए, मुबीन साहिल, डॉक्टर सागर, डॉक्टर बशीर पासा, डॉक्टर हिम्मत कुमार, फरजाना बहन, गुरु भाई, भाभी सेबा और बाकी सब तमाम सुनने वालों के लिए।
1: वाह जी वाह, क्या कहने,
0: ये थोड़ा फनी सर रफी साहब का गाना है।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने,
0: हसीनों की आंखों का तारा रहूंगा, कवारा रहा हूँ कवारा रहूंगा, हसीनों की आंखों का तारा रहूंगा, कवारा रहा हूँ कवारा रहूंगा।
1: क्या कहने,
0: न आटा मैं गूंदू न खाना बनाना, नित नई थाली में नित नया खाना। न आटा मैं गूंदू न खाना बनाना, नित नई थाली में नित नया खाना, यूं ही होटलों पे गुजारा करूंगा, कवारा रहा हूँ कवारा रहूंगा, हसीनों की आंखों का तारा रहूंगा, कवारा रहा हूँ कवारा रहूंगा। मैं मर्जी से गाऊं, मैं मर्जी से नाचूं, लंदन में सोऊं तो पेरिस में जागूं। हाँ मैं मर्जी से गाऊं, मैं मर्जी से नाचूं, लंदन में सोऊं तो पेरिस में जागूं, उसीनों के साथ जाके जॉगिंग करूंगा, कवारा रहा हूँ कवारा रहूंगा, हसीनों की आंखों ताला लहूंगा, कवारा रहा हूँ कवारा रहूंगा, हसीनो हसीनो हसीनो मजबीनो जबीनो जबीनो।
1: वाह,
0: चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा, मेरे सोए हुए अरमां यूं जगा के तो न जा।

0: वाह क्या खेले,
1: ये खामोशी ये तन्हाई किसी भी काम ना आई, सुने कुछ बात ना मेरी ना अपनी बात समझ आई ना अपनी बात समझ आई चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा मेरे सोए हुए अरमां यूं जगा के तो न जा चांदनी रात में।

0: कहनी
1: जरा सा पास आने दे, जरा दिल को मचलने दे, अभी तो रात है बाकी, दिलों की महफिल को सजने दे, दिलों की महफिल को सजने दे। हाय हाय चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो ना जा मेरे सोए हुए अरमा, यूं जगा के तो ना जा चांदनी रात में। ओके जी थैंक यू,
2: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, मैंने थैंक यू यूज़ ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: सी यू ट्यूसडे,
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। That was हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज मोहम्मद रफी साहब, कमाल कर दिया इन्होंने, बहुत खूबसूरत अंदाज इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के फ़ौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज और बहुत प्यार करने वाले हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका।
3: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rusholme, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.
2: Right, welcome back and listening, you're listening to Radio 103.2 FM, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज, बहुत प्यार करने वाले हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी वो फ़ोन करते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे मोहतरम उस्ताद मोहतरम एम खान जी हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी तरफ से आपका जितना स्टाफ खवातीन हज़रात सबको अल्लाह सलामती अता,
2: आमीन आमीन आमीन हक आमीन।
4: बरकर हुआ आइंदा जैसा पिछले हफ्ते जनाब फरियाद साहब या कोई ऐसा गुस्सा भी इलम आदमी हो
2: जी जी,
4: तो मेरा नाम काट दें तो उसको पहले टाइम दें।
2: माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बड़ा ही अच्छा लगा माशाल्लाह, जब भी आप अच्छी बातें गुफ्तगू करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और सब सुनने वाले आपको बड़े ही अदबदार बड़े प्यार करते हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है जी।
4: इलम वालों की कदर करना इंसानियत का एक मकाम है
2: जी,
4: ये आप लोगों का बड़ा पान है फरियाद साहब का कि कम इलम वालों को भी टाइम देते हैं लेकिन उनका ज्यादा बनता है।
2: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें अच्छा लगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे, चलो आप शुरू करें, और क्योंकि मैंने यहाँ पे अजान भी पेश करनी है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी जी आप पढ़ें, और थोड़ा जा आपने होल्ड कर लेंगे, और होल्ड करने के बाद आप दोबारा शुरू कर लेंगे जो भी आपने कलाम सुनाना है, और अपना मौका पूरा करें।
4: हाँ ठीक है, फिर मुझे बता देना।
2: जी जी जी जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह।
4: अब अल्लामा इकबाल का कलाम शुरू करता हूँ।
2: जी जी बिस्मिल्लाह करें।
4: अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, मुझको भी नजर आती है ये बू कलमोनी,
2: वाह
4: वो चांद ये तारा है,
2: वाह
4: वो पत्थर ये नगी है,
2: वाह क्या कहने,
4: देती है मेरी चश्मे बसीरत भी ये फतवा,
2: वाह
4: वो कोहो ये दरिया है,
2: वाह
4: वो कोहो गर्दू ये जमीन है,
2: वाह
4: हक बात को लेकिन मैं छुपा कर नहीं रखता,
2: वाह क्या कहने,
4: तू है तुझे जो कुछ नजर आता है नहीं है,
2: वाह
4: आगे मियां साहब का
2: जी जी
4: इसका तो जब कोई टाइम आपका आ गया तो मुझे रुक जाऊंगा मैं
2: जी जी जी जी माशाल्लाह बहुत मेहरबानी जी जी
4: नियामत अपनी दी
2: माशाल्लाह माशाल्लाह
4: कुछ मैनू बख्श
2: नियामत
4: अपनी दी कुछ मैनू बख्श नासा
2: वाह बहुत खूब
4: हिम्मत दे दिल तेरा शुक्र बजा लियावा
2: क्या
4: लाहनेर अजल बुरेदा
2: वाह वाह वाह क्या कहने
4: ओ चानन ला अकलदा
2: वाह
4: बख्श वलायत शेर सुखन दी
2: वाह
4: यूमन रे विच रुल्दा
2: वाह वाह
4: अव्वल दे दिल अव्वल दे दिल जिस विच होवन सुचे सुखन खजाने
2: बहुत खूब बहुत खूब वाह
4: लाल जवाहर कड कड देवे
2: माशाल्लाह
4: कुवत बख्श जबान जबान जबाने
2: वाह वाह वाह
4: तबा मेरी दा नाफा खोले
2: माशाल्लाह
4: ओ मुल्के मुश्क दमाई
2: माशा और यहाँ पे आप रोक लें प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया सर अच्छा यहाँ पर होल्ड कर लें कि मैंने जान पेश करनी बहुत बहुत शुक्रिया सर आप थोड़ा होल्ड करेंगे और थोड़ी देर के बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत आपका अंदाज है बड़ा ही प्यारा अंदाज है माशाल्लाह क्या कहने जी और ये भी इनका खूबसूरत रंग है माशाल्लाह और यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक सेकेंड के बाद एक मिनट के बाद और यहाँ पर अजान ब्रेक होगी और बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो भी मेरे बहन भाई हैं साथी दोस्त बाबा अजीज़ हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह और आपने तारीफ़ की है हमारे मोहतरम एम खान साहब की माशाल्लाह और बड़ी खूबसूरत इनका बड़ा ही प्यारा अंदाज है बाकी इसमें कोई शक नहीं है बड़ा ही खूबसूरत अंदाज इनका बड़ा ही प्यारा अंदाज है और माशाल्लाह माशाल्लाह और जितनी भी मैं इनकी तारीफ़ करूँ कम है क्योंकि एम खान की जो अंदाज है ये बहुत ही बड़े दिनों के बाद ही मैंने अंदाज सुना है माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और यहाँ पे अजान पे पेश करनी है की पे लगती सनराइज रेडियो
0: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बाकी लिस्टनर सुनर रेडियो 93.2 FM और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बड़े ही खूबसूरत माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम एम खान जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी हजूर
1: वालेकुम सलाम। अल्लाह आप सबका रमजान की
0: माशाल्लाह
1: रोशनी से नूर ऐसा पैदा फरमाए।
0: आमीन आमीन आमीन आमीन। अल्लाह
1: अमीन सा फरमाते
0: जी जी।
1: और दे जेल
0: वाह
1: जिस च होवन सुचे सुखन खजाने
0: माशाल्लाह।
1: लाल लाल जोहार कड करो तेरे
0: वाह वाह वाह
1: कुवतो बख्श जुबाने
0: वाह वाह
1: तबा मेरी दार नाफा खोले उल्के मुश्को दुमाई सुन सुन मगज मातर होवन इश्क दी पाए
0: वाह वाह
1: सुखन मेरे दी शकुरू होवन
0: वाह क्या कहने
1: मिठे मुँह कलम दे
0: वाह
1: शेर मेरे दी अतरू कागज लावे खालो रकम दी एक अश्वर
0: जी जी
1: डेरी जहाज में बैठा हुआ था। डेरी जहाज के ड्राइवर ने कहा कि ये जहाज डूबने वाला है।
0: ये जहाज डूबने वाला जी जी।
1: साहिब इलम वहाँ बैठा हुआ था, चोर ताबा होने लगा
0: जी।
1: उनकी वालदा बोली कहने लगी बेटा
0: जी
1: इतना चोर शराबा हो रहा तुम इस तरह पीसफुल बिल्कुल पढ़ रहे हो मालूम होता कि ये तुझे कुछ नजर नहीं आया लोग क्यों शोर कर रहे हैं
0: जी।
1: कहने लगा अम्मा जी आपके जिसको बैरी जहाज में बैठने से पहले
0: जी
1: आप क्या वुजू कराया और पांव मैंने धोए और वुजू का पानी मैंने पी लिया फिर अल्लाह की पाक बारगाह
0: में वाह जी वाह क्या कहने
1: रब्बे काबा आखिरी नबी का सदका मैं अपनी वालदा को लेकर जा रहा हूँ
0: जी।
1: तू अपने फजल से जो मैं दुआ मैंने पढ़ी है
0: वाह जी वाह
1: बरकत से इस बैरी बेड़े को किनारे लगाना किसी का कोई एक जर्रा चीज कोई नुकसान न हो
0: जी।
1: तो कह लगा अम्मी जान मैं तो आपकी दुआ से इंश्योरेंस करा दी थी उसकी वजह से कुछ भी होने वाला नहीं ये लोग वैसे शोर शराबा कर रहे हैं जैसे को जहाज किनारे लगा कहने लगा अम्मा जी अल्लाह करीम ने आखिरी नबी के सर से कितनी सलामती और आपको सुकून आया। कहने लगी बेटा तेरी जुबान से बात निकली सुकून आ गया। फरमाए नहीं अम्मा जी आपकी सरपरस्ती ने मुझे सुकून दिया
0: अल्लाह
1: ने मुझे बचाया और सबको बचा कर किनारे लाया दरी बेड़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। वालदेन की दुआ बड़ी ऊंची होती
0: बड़ी ऊंची होती है माशाल्लाह
1: हर को नियामत मल दिया
0: आमीन अता फरमाए आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया
1: अदा करता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं और बहुत बहुत आपका भी खूबसूरत अंदाज़ है बड़ा प्यारा अंदाज़ एक और खूबसूरत इनका अंदाज़ है और हमें अच्छा लगा माशाल्लाह। ये थे हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज़ एम खान जी हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह हमारे ब्रेफर्ड की रौनक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में हमें याद रखें और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह और उनके पास नॉलेज है माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और हमारे मोहतरम भाई دوست ہیں جتنی ان کی میں تعریف کر رہا ہوں ان کے پاس تو نالج کیا کہیں گے, ان کے پاس تو سمندر ہے, پورا سمندر ہے ان کے پاس. اور یہاں میں چھوٹی سی بریک کریں گے, بریک کے فوراً بعد دیکھو یہ کون ہے ہماری محفل میں, خوبصورت واضح واضح جتنی بھی میں تعریف کروں کم ہے. اور آج ہمارا پروگرام مکمل ہو چکا ہے, اور بہت بہت شکریہ ان کا بھی, اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہو بہار آگی.

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rosshome, Manchester from 12 noon till 9 p.m. on both days. Featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobarton Dalwar, Roach Killer and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.
3: Sunrise Music. Right, welcome back, listening to Sunrise Radio 103.2 FM. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज़, हमारे मोहसिन हैं और हमारे मुर्शिद हैं, आ गए हैं और छा गए और क्या कहने, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम दिल अजीज़, बहुत प्यार करने वाले शकील साहब हमारा साथ दे रहे हैं, ऑल द वे फ्रॉम बर्ल लंकशायर से हमारा साथ दे रहे हैं, और यहाँ पर वेलकम कहेंगे, जी हां कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्ला कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
4: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं
3: हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप मौसम को एंजॉय करें।
4: मौसम का पता नहीं कैसा है,
3: माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मौसम, बड़ा ही नायाब मौसम है, अल्लाह करे ऐसा ही रहे।
4: अच्छा मौसम
3: जी,
4: ट्यूजडे होगी बारिश, उसके बाद बारिशें
3: हैं। चलो कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह की रहमत है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी दुनिया का सुना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, गर्मी के वैसे भी मौसम है, और इंशाल्लाह गर्मी होगी, देखते हैं क्या होता है।
4: नेक्स्ट वीक थोड़ी सी सर्दी होगी।
3: अच्छा नेक्स्ट वीक में जी,
4: ट्यूजडे वेडनेसडे बारिश
3: है। जी जी बाकी जी जी, हल्की फुल्की बारिश होगी इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है जी, देखते हैं जी। आपको पता है यहाँ के मौसम का कैसा होता है, और ऐसे ही है, देखते हैं क्या होगा जी।
4: मौसम जो है
3: जी,
4: सूरज की वजह से बदलता रहता है।
3: हाँ सूर्य नजदीक का नीचे आ रहा है ना, जी जी ऐसे ही
4: है ना
3: जी,
4: हर रोज अपनी जगह बदलता है
3: ऐसे ही,
4: इसीलिए फिर मौसम बनते रहते हैं,
3: ऐसे ही बनते रहते हैं जी, माशाल्लाह ये ऐसे ही है माशाल्लाह।
4: हर 365 दिन जो होते हैं ना
3: जी जी,
4: हर रोज बदलता रहता है
3: माशाल्लाह, क्या कहने, वाह
4: आखिर में पहली जगह आ जाता है,
3: पहली जगह आ जाता है, ऐसे ही है जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह।
4: पहले तमाम सुनने वालों को बैठते से अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
4: वो टाइम थोड़ा इसलिए,
3: कोई बात नहीं, आपके लिए टाइम ही टाइम है, क्यों वरी करते हैं आप, माशाल्लाह जी।
4: आपको सुनने वाला को मेरे अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजूर जी, सॉरी सेकंड, जी जी
4: जी
3: जी,
4: थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाए।
3: नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप करें अपना मुकम्मल करें, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं वो फिर आप मुझसे भी नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि वो टाइम नहीं देते हैं आप उनको,
4: तो बहुत ख्याल रखना चाहिए जी, इतने लोग रह जाते हैं
3: जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, ऐसे ही
4: सारे थोड़ा सा टाइम
3: जी जी माशाल्लाह जी जी,
4: सब हम सुन ले सकते हैं,
3: क्या कहने, वाजी वाह क्या कहने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
4: महमूद अब्दुल अजीज
3: साहब की, जी जी,
4: महमूद अब्दुल कदीर,
3: अब्दुल कदीर, अच्छा जी,
4: इसका नाम है इनका
3: जी जी
4: का,
3: जी जी,
4: वो कहते हैं दागे गमे फिराक मिटाया न जाएगा।
3: आए हाय हाय हाय, क्या कहने,
4: दागे गमे फिराक मिटाया न जाएगा, रोशन है ये चिराग बुझाया न
3: जाएगा। आए हाय क्या कहने,
4: शुक्रिया।
3: वाह,
4: आले दिले खराब सुनाया न जाएगा, आले दिले खराब सुनाया न जाएगा, सुरदा एक हसैन को बनाया ना जाएगा।
3: वाह जी वाह, क्या कहने।
4: जो किसी दूसरे को जो वो परेशान नहीं करना चाहिए।
3: जी जी ऐसा ही है कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।
4: रहना ये चमन ही तो बुलबुल की जान है।
3: आए आए आए आए, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
4: चमन ही तो बुलबुल की जान है,
3: वाह वाह।
4: ये चमन से बुलबुल शैदा न जाए।
3: आए हाय हाय हाय, क्या कहने। वाह वाह,
4: मौत के बाद एक ठिकाना मिला मुझे।
3: आहा,
4: सारी मौत नहीं, मुद्दत।
3: मुद्दत के बाद ठिकाना मिला, मैं भी कह रहा था जी जी। अच्छा, मुद्दत के बाद जी जी
4: ठिकाना मिला मुझे।
3: वाह,
4: अब आस्था है छोड़ के छोड़ के जाया ना जाएगा।
3: आय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
4: नक्शे पा किसी का निगाहों के सामने, अब हर किसी के दर पे झुकाया सर झुकाया ना जाए।
3: वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
4: नरंगी ये जमाने का ये रंग है कदीर।
3: वाह,
4: नरंगी ये जमाने का ये रंग है कदीर, अब दोस्त को भी दोस्त बनाया।
3: आय हाय हाय, मुकर्र जी मुकर्र, बहुत खूब बहुत खूब।
4: नरंगी ये जमाने का ये रंग है कदीर,
3: वाह,
4: अब दोस्त को भी दोस्त बनाया ना जाएगा।
3: वाह, क्या कहने।
4: ये आखिरी शेर आपके नाम।
3: वाह जी जी, अरशाद।
4: तुलुए आफताब को लेकर आ गए हैं परवेज खान।
3: वाह जी वाह, क्या कहने।
4: आफताब पता क्या है, सनराइज।
3: जी जी सनराइज जी जी।
4: तुलुए आफताब को लेकर आ गए हैं परवेज खान।
3: वाह,
4: अब हमको कहीं और जाया ना जाए।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा अंदाज।
4: ठीक है, तो एक गजल है
3: हसन जाफरी साहब। जी जी जी जी जी, अरशाद।
4: कहते हैं
3: जी जी,
4: बुराई को बुराई,
3: बुराई को बुराई जी,
4: बुराई को बुराई, फन को फन कहना ही पड़ता है।
3: हाय हाय,
4: जो हक है वो सरे दारो रसन कहना ही पड़ता है।
3: क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब बहुत आला, क्या कहने।
4: बुराई को बुराई, फन को फन कहना ही पड़ता है, जो है वो सरे दारो रसन कहना ही पड़ता
3: है। वाह वाह वाह वाह,
4: कभी पूछी न अहले अंजुमन की बात भी तुमने, तुम्हें इस पर भी रूहे अंजुमन कहना ही
3: पड़ता है। वाह जी वाह वाह वाह वाह वाह,
4: शिकारे सर्द मैं ये वतन हूँ, ये तो पर हक है।
3: हाय हाँ हाँ, वाह जी वाह, बहुत खूब।
4: शिकारे सर्द ये वतन हूँ, ये तो हक है,
3: वाह,
4: मगर अपने वतन को वतन कहना ही पड़ता है,
3: कहना ही पड़ता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने। वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूबसूरत।
4: जिन्हें अपना कभी कहते थे
3: वाह,
4: हम उनको ही बेगाना।
3: वाह,
4: जिन्हें अपना कभी कहते थे हम उनको ही बेगाना,
3: वाह,
4: तो फैजे गर्दशे चरखे को हन कहना ही पड़ता
3: है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
4: बला से राबराने असर मुझको बेअदब समझे, बला से राबराने असर मुझको बेअदब समझे, मुझे हर राहजन को राहजन कहना ही पड़ता
3: है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने।
4: कहीं सोजे गमे पिनहा से
3: वाह,
4: जंजीरें पिघलती हैं।
3: वाह,
4: कहीं सोजे गमे पिनहा से जंजीरें पिघलती हैं, इसे दीवानों का दीवानापन ही कहना
3: पड़ता है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने।
4: फिजा का
3: जी जी
4: लाल हो,
3: वाह,
4: फिजा का लाल हो, या फसले गुल की गोद का पाला।
3: वाह वाह,
4: चमन को तो बहर सूरत चमन कहना ही
3: पड़ता है। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
4: उजाले जुल्मतों की लाश पर तखलीक होते हैं।
3: वाह,
4: उजाले जुल्मतों की लाश पर तखलीक होते हैं, सर सहर को शब की मैयत का कफन कहना ही पड़ता है।
3: बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
4: जहां तखलीक पर पाबंदियां हों जिक्र पर पहरे।
3: वाह,
4: जहां तखलीक पर पाबंदियां हों फिक्र पर पहरे, उसे दारो रसन की अंजुमन कहना ही
3: पड़ता है। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, क्या कहने। वाह जी वाह वाह।
4: आखिरी शेर कहते हैं
3: जी जी,
4: खफा हैं होशमंदाने जहां पर, खफा हैं होशमंदाने जहां पर, जोश वहशत में जो आ जाता है लब पर, कहना ही पड़ता
3: है। वाह जी वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
4: जाता है लब पर उसे हसर कहना ही
3: पड़ता है। वाह वाह क्या कहने, बहुत खूबसूरत अंदाज, बड़ा प्यारा अंदाज, और क्या कहने आपकी, बहुत ही शुक्रिया आपका कि आप आए। और हमारी प्यारी बहना है शमा जी, वो आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं, वो भी प्रोग्राम सुन रही हैं, वो भी काम पे हैं और चोरी चोरी वो प्रोग्राम सुन रही हैं, तो वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हमारे मोहतरमे भाई हैं और शबरेज भाई, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने छुट्टी ली है आपके लिए आज माशाल्लाह, उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम सुनूंगा जी।
4: नहीं,
3: कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी आपने महफिल लूट लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आप आए बाहर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, कर रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त, जितनी उनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे माशाल्लाह, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, ये हमारा शहजादा है माशाल्लाह। और जितनी भी इनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है, भाई शुक्रान भाई हैं, और क्या इनका अंदाज़ है, क्या गाने गुनगुनाते हैं, आजकल तो मैंने छा गए, पूरी दुनिया में छा गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी कैसे मजाज हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आपकी आवाज़ सुन के मैं और भी बेहतर हो गया हूँ, आगे से भी बेहतर हूँ।
5: अच्छा, तो पिछले तकरीबन 2-3 वीक से मैं देख रहा था कि आपका प्रोग्राम नहीं था रहा।
3: मैंने दो छुट्टियां की थी, वहां पे एक फौतगी हो गई थी हमारे घराने में, तो इसलिए मैंने छुट्टी की थी दो दिन। तो बहुत शुक्रिया कि आपने नोटिस किया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का।
5: सर जी आप, हम तो आपके दिल में और आप हमारे दिल में रहते
3: हैं। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, आज तो ज्यादा ही मक्खन हो गया। वाह वाह जी वाह, आज तो मान गया मेरे भाई, मान गया तो क्या कहें।
5: मैं आपकी रिक्वेस्ट अभी अपना उसको क्या कहते हैं कि उसको गैरेज में है अभी, इसकी एमओटी करवा रहा हूँ, उसकी आयल चेंज करवा।
3: अच्छा वाह वाह वाह वाह वाह, उसको आप तैयार करें, रेडी करें उसको, ठीक उसको उसको तैयार करें
5: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी मैं शेर सुनाने जा रहा हूँ।
3: वाह अशार अशार अशार वाह,
5: कहते हैं कि पहले फूंकों से बुझाया मेरी जिंदगी का चिराग।
3: हाय हाय हाय हाय हाय वाह,
5: पहले फूंकों से बुझाया था मेरी
3: जिंदगी का चिराग,
5: अब वो आते हैं मेरी मरकत पे चिरागा करने।
3: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, इसको दोबारा करें, मुकरर मुकरर, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
5: पहले फूंकों से बुझाया था मेरी जिंदगी का चिराग,
3: वाह वाह,
5: अब वो आते हैं मेरी मरकत पे चिरागा।
3: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने मेरे भाई, मैं आपको सलूट करता हूँ यहाँ पे हवा के दोष में, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, बहुत खूबसूरत अंदाज आपका, बहुत प्यारा अंदाज।
5: गाना सर मैं बड़ा माशाल्लाह बड़ा मुश्किल गाना था और बड़े मुश्किल से मैंने तैयार किया है, अगर कोई गलती गुस्ताखी हो छोटा
3: सर जी मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं मेरे भाई, क्यों शर्मिंदा करते, इतनी आपकी प्यारी आवाज है, और आप तो मैं बॉलीवुड लेके जा रहा हूँ आपको, डोंट वरी
5: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
3: जी।
5: तो गाना जी

0: बहुत शुक्रिया सर जी टाइम देने का, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपको खुश रखे,
1: आमीन आमीन। और जो आपने गाना गुनगुनाया मेरे भाई, कसम से मैं कह रहा हूँ, और क्या कहने, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और अपना आवाज़ का सदका दे देना, ठीक है ना। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बड़ी खूबसूरत अंदाज़ और बड़ा प्यारा अंदाज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और जो आने वाला प्रोग्राम होगा और उसमें आपने शिरकत करनी है, और जो गाना वो तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं ना, उसको लेके आएँ
0: जी इंशाल्लाह।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वैन जी, आपके साथ मुलाकात होगी हवा के दोष में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, एंड ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, और क्या कहने मेरे भाई, ब्यूटीफुल ट्रक और बड़ा ही खूबसूरत इनका आवाज़ है, और आवाज़ क्या आवाज़ इन्होंने पाई, बड़ी खूबसूरत। ये गाना मुश्किल गाना था और इन्होंने गुनगुनाया और बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ पे वेलकम कहेंगे, जी हाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, खत बिस्मिल्लाह कहेंगे इनको, और यहाँ भी हमने करना है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि कॉलर्स ज़्यादा हैं, टाइम थोड़ा है, और क्या करेंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी।
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
1: Right, time in the studio is 46 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep electronic, keep electronic with the Parviz Khan. Yahan pe nikki ji break ki break ke foran baad hamara saath de rahe hain aur hamare khoobsurat callers hain. Bahut bahut shukriya aap sab ka.
3: Teri
4: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: राइट, वेलकम बाक लिस्टनिंग, योर लिस्टनिंग सुनने रेडियो, और यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा साथ देने अतिका साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
6: अस्सलाम
1: वालेकुम। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक से? ठीक है आपकी? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा कि आप बीमार हैं फिर भी आप आई हैं, आपने प्रोग्राम में शिरकत की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके लिए दोबारा यहाँ पे क्योंकि आपके जी
6: थैंक यू। तो सब लोग आए, बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम
1: जी,
6: अच्छा प्रोग्राम, और इतना खूबसूरत उन्होंने सब
1: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। शुक्रान भाई, भाई ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत गाना गुनगाया, सब ने कमाल कर दिया आज। मैंने कहा किस किस की तारीफ करूँ, और बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत आए और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज उनका जी,
6: बहुत लगता है जब अच्छे लोग आते हैं और इतनी खूबसूरत
1: आवाज़
6: मिलती हैं
1: जी।
6: तो आपके प्रोग्राम की जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं तो ये आवाज खूबसूरत गाना शुरू हो
1: जाती जी,
6: अच्छा लगता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी,
6: पेश करते हैं तो इस पे आपको जो
1: जी
6: ऐसा होता है और दिन ब दिन कहते हैं
1: जी माशाल्लाह। और आपको सलाम पेश कर रहे हैं हमारी बहुत ही प्यारी बहना है शमा जी हैं, वो आपको सलाम पेश कर रही हैं, और उनका मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि वो प्रोग्राम सुन रही है प्रोग्राम, और उनको आपने उन्होंने आपको सलाम पेश किया जी।
6: थैंक यू आपको बहुत बहुत सलाम, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने याद रखा और वो सबको सलाम दे रही, बहुत शुक्रिया। तो अशार हैं जो कि मैं उस वक्त जो भी याद है वो पेश कर दूंगी सबके लिए।
1: जी जी जी।
6: और हमारे सबसे पहले तो हमारे जो बताए थे याद बन वो भी उनका बहुत शुक्रिया।
1: फरियाद भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह, वो भी हमारा आपके बाद वो आएंगे जी।
6: बहुत दुआएं कर उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक सलामत रखे और हमेशा ही वो आते हैं खूबसूरत अपनी नमाज में वो पेश करते हैं अपनी शायरी और सुनने को मिलती है इंशाल्लाह वो, और फिर दोबारा आएंगे सुनने को मिलेंगी
1: जी।
6: उनको बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
6: कहीं से रोज तो मिलती है तेरे अंदर के वसल की खुशबू, कहीं से रोज चली आती है तेरे अनदेखे बसल की खुशबू, तेरी आवाज अंगलिए के बामों पर मेरे छलक जाते हैं।
1: आहा क्या कहने,
6: सुबह सुबह भर जाते हैं,
1: वाह
6: भर जाते हैं मेरे नक्श निखर जाते हैं।
1: वाह।
6: बड़ी कोशिश से तुम की, बड़ी कोशिश से नम की हुई तन्हाई की वो देख कर ये शनासा खुशबू।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
6: यक और बढ़ गई रूह बारू बजा आस्ता आस्ता बोली हुई धड़कती हुई दिल की धड़कन।
1: वाह जी वाह क्या कहने, बहुत खूब।
6: तुम्हारी कुछ और धड़क थोड़ी कुछ और धड़क जाती है कि कहीं माजी पलट कर आए।
1: वाह।
6: कतरा कतरा गुजरती रात कभी तेरे बोले हुए लब्जों पर ठहर जाती है।
1: वाह जी वाह क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
6: तेरे बोले हुए वो लफ्ज तमाम।
1: वाह।
6: से रखी हो फूल पर शबनम।
1: वाह।
6: जैसे सहरा में बच्चों का गुमान।
1: वाह।
6: जैसे कौसार पर तारी बदली। जैसे खामोश सर्दियों की शाम।
1: वाह।
6: तेरे बोले हुए वो लफ्ज तमाम।
1: वाह।
6: चांद के पास जैसे तारे हम।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
6: चलती हुई मध्यम सी हवा जैसे ठहरी हुई रोशन खुशबू।
1: वाह।
6: से चट्टान से कतरा।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
6: खाकर कितनी वादी में गिरे जैसे शाहों पे हिजर के पत्ते।
1: वाह।
6: चोट खाकर किसी वादी में गिरे जैसे शाहों पे हिजर के पत्ते।
1: वाह।
6: धीरे सबा के साथ हिले जैसे गिरती है तार से बारिश।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
6: हुए वो लफ्ज तमाम।
1: वाह।
6: जैसे एक रात में कोई दस्तक।
1: वाह।
6: आंखों में ख्वाब ठहरा हो।
1: वाह।
6: सारा हिस्सा ठहरा हो।
1: वाह जी वाह।
6: से पलकों पर की चांदी हो। जैसे एक फूल की टूटी पत्ती।
1: वाह।
6: से कोई ख्वाब न दिखा हो जैसे निखरे हुए रंगों की धनक।
1: वाह।
6: से पानी में तैरता एक नाम।
1: वाह।
6: तेरे बोले हुए वो लफ्ज तमाम।
1: वाह जी वाह क्या कहने। वाह।
6: बोले हुए वो लफ्ज तमाम जैसे रातों को जुगनुओं की चमक।
1: वाह।
6: आंखों में जान के जज्बे।
1: वाह।
6: जो पे रखे फूल।
1: वाह।
6: कई शाहों की चांदी चांद की बंदी जैसे अशार के
1: लिए। बहुत खूब।
6: मोड़ के चलती लहरें। तमाम।
1: वाह जी वाह बहुत खूब।
6: जैसे पानी में तैरता एक नाम तेरे बोले हुए वो लफ्ज तमाम।
1: वाह।
6: जैसे रातों को जुगनुओं की चमक।
1: वाह।
6: से आंखों में जान के जज्बे।
1: वाह।
6: से होंठों पे रखे फूल कई जैसे शाखों पे चांद की बाली।
1: वाह।
6: जैसे अशजार के लंबे साए। से रुख मोड़ के चलती लहरें।
1: वाह।
6: से बोले हुए वो लफ्ज तमाम।
1: वाह।
6: रास्ता है पत्थर पर।
1: वाह वाह।
6: रखी हुई फूल पे शबनम।
1: वाह जी वाह।
6: तेरे वस्त्र की खुशबू दूर से रोज चली आती है।
1: वाह।
6: जैसे पानी पर तैरती नावो।
1: वाह।
6: और दरमियान में ही दरिया।
1: वाह।
6: जिसमें चलता है रूह पहला आप ना ही तुम आओ ना ही मैं पहुंचूं।
1: वाह।
6: कम नहीं है ये वक्त ये फसलों का अजाब।
1: वाह।
6: फासले कम भी हो तो तू वो तेरे और मेरे दरमियान में पड़ता है चना।
1: वाह जी वाह,
6: तेरे बोले बोला।
1: वाह जी वाह, बहुत खूब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या कहने जी, बहुत खूबसूरत शायरी आपने की है और बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे साथ चौधरी फरियाद साहब भी हैं, उनको भी थोड़ा टाइम दें, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वॉज अतीका साहिबा थी, और बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने हमें याद किया, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। चौधरी फरियाद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चौधरी साहब, क्या हाल चाल, ठीक है आपकी? आपको भी टाइम है, और अतीका साहब वो आई थी, वो उन्होंने मैंने कहा कि उनको थोड़ा सा टाइम आपको भी दे दें, और क्योंकि आपने भी फ़ोन किया और आपके भी चाहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा फ़ोन किया। जी आप शुरू करें। जी जी जी जी
3: जी जी,
1: शुक्रिया
3: बहुत शुक्रिया
1: उन्होंने मेरा सलाम। जी जी,
3: कहंदे ने कि इत्थे ठग नूं ठगदे पे ठगदे नी, इत्थे ठग नूं ठग पे ठगदे नी, इधर ठगदे उधर ठकाई जांदे, रूप होर बरूप कुछ होर होंदा, सच देख के झूठ कमाई जांदे।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
3: इत्थे ठग नूं ठग पे ठगदे नी, इधर ठगदे उधर ठकाई जांदे, रूप होर बरूप कुछ होर होंदा, सच देख के झूठ कमाई जांदे।
1: हाय हाय हाय हाय चौधरी साहब,
3: शायद शोर विच फर्क, शायद शोर विच दसदा नहीं दिसदा नहीं, शोर चोर दा चोर ही पाई जांदे, इबरत फिर भी नहीं यकीन होंदी, कल कीते अज सामने आई जांदे
1: आई जांदे। हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
3: ते दिसने के दोनों हैं मौलम, नहीं फर्क कोई, सारे कहंदे
1: वाह
3: पढ़ाए अस्तानी चंगी, जवाज के शादियां करन वाले रो रो कहंदे ए नहीं जनानी चंगी।
1: वाह वाह,
3: दानू हैन मुहल्लम, नहीं फर्क कोई, सारे कहंदे पढ़ाए अस्तानी चंगी, जवाज के शादियां करन वाले रो रो कहंदे ए नहीं जनानी चंगी।
1: हाय हाय,
3: सूरत सीरत विच होवे यकता बीवी, फिर भी लगदी है रन बेगानी चंगी, आवत जायद यकीन सो बार आ रहे, लगे इसे दुनिया मर जानी चंगी।
1: हाय हाय हाय चौधरी साहब, वाह क्या कहने क्या कहने चौधरी साहब।
3: कासद शक ने तेरी जबान उते, कासद शक ने
1: तेरी जबान
3: उते, जल यार दी लगे जबानी चंगी,
1: वाह
3: तोहफा इक तो इक ना याब होंदा, दीदी सजना दी लगे निशानी चंगी।
1: वाह जी वाह,
3: जेड़ा दिल दी बाजी नु हार जावे, उस नु ताकत ना लगे सुल्तानी चंगी, दर ऐसे भी कुछ यकीन मिलते, ओ बदले शाही दे लगे दरबानी चंगी।
1: वाह चौधरी साहब वाह, मन गया चौधरी साहब मन गया।
3: एक दो शेर जनाब
1: जी जी जी
3: आपने बारे
1: जी जी
3: कहंदे ने कि अज दी रात जहां सदके मिलया ख्वाब अंदर जाने यार सुतियो,
1: वाह
3: तूक सुता सा ऐस आराम दे नार कीता, यार ने आन बेदार सुतियो।
1: वाह चौधरी साहब,
3: फिर आन बैठा मेरे कोल सजन लाया, गल ते कीता है प्यार सुतियो, कुल अख जमाना नजर आया, देखी ख्वाब अजब बखार सुतियो।
1: वाह चौधरी साहब वाह,
3: ਤਾਈ ਵਿਰਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਸਦਕੇ ਮਿਲਿਆ ਖਾਬ ਮਿਲਿਆ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ ਯਾਰ ਸੁਤਿਓ, ਅਸਾਂ ਮੁੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇ ਤਰਸਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਰਜ ਰਜ ਕੀਤਾ ਏ ਦੀਦਾਰ ਸੁਤਿਓ।
1: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ।
3: ਕੁਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ
1: ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
3: ਜਿਸ ਦੀ ਅਜਬ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਬਹਾਰ ਸੁਤਿਓ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੀਰਾਨ ਜੁਦਾ ਹੋਤੀ, ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਉਮਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੁਤਿਓ।
1: ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ।
3: ਅੱਖਿਆ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਲਟੇ,
1: ਵਾਹ
3: ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਲਟੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੰਗੀਲੜਾ ਖਵਾਬ ਹੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਗੁਣਗਾਰਾਂ ਨੇ ਵਕਤੇ ਸਵਾਬ ਹੁਣ ਸੀ।
1: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ,
3: ਸਾਚਰ ਵੀਦ ਨਿਆਜ਼ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ, ਬਾਰੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆਈ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਾਲੀ ਜਗਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰਦੇ ਫੌਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਕਾਬ ਹੁਣ ਸੀ।
1: ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਨੀ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੈਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਦੁਆ ਮੁਜਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਲਵ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।
7: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio.
8: From the Sky News Centre at 11. Two firefighters have been killed after two helicopters collided while tackling wildfires west of Athens. The Greek Fire Service says the victims were the only people on one aircraft while the two crew members on the second survived. The collision happened over the Sartha area. Meanwhile, Greek police say a man has made a confession after the body of a British woman was discovered in Athens. Elizabeth Jane Ross from Edinburgh is believed to have died several days before she was found in a derelict building last month. Andy Burnham says his government will be relentless in tackling small boat crossings across the English Channel. Speaking in Dover, he said the number of officers targeting people smuggling gangs has more than doubled this year. Shadow Immigration Minister Matt Vickers says Labour's approach isn't working.
9: Since this Prime Minister came to office, more than 2,000 people have arrived and several people have been found dead in the Channel. This is a huge problem. It requires a real sizable solution. People who come into this country must be detained and must be deported.
8: A man in his 70s and a woman in her 40s have been arrested after a man was shot dead at a traveller site in Wiltshire. Police were called out to Calcutt near Cricklade just after 8 o'clock this morning. In sport, the Commonwealth Games in Glasgow have drawn to a close after 11 days of sporting action. We go live now to Kat Suave.
10: Simple Minds have brought the curtain down on the Games with a huge firework display over the River Clyde. The closing ceremony featured a fusion of Scottish and Indian culture in preparation for the next tournament in Amverdad in 2030. The home nations took home 196 medals over the course of the Games.
8: Elsewhere, St Johnstone kicked off their first season back in the Scottish Premiership with a thrilling 4-3 victory over Kilmarnock. There was also a positive start for Motherwell as they won 2-1 away to Hibs. That's the latest from the Sky News Centre. I'm AJ Walsh.

कहर पैने ने वैरियां उत्ते एक दिन साड़ियां सबरां दे एक दूजे वल मूह ना रखे एना साड़ियां गबरां दे एथे नहीं ते हशर दिहाड़े सजणां गल्लां होणगियां नक्शे आप वहाणे ने मैं रब नूं तेरिया जबरां दे सादिक इको नुक्ते पिछे महरम मुजरम बनिया वा मतलब समझ के मैं की करने इन जेरां जबरां।